खिड़की से धूप की सुनहरी किरणें सीधी आपके चेहरे को देखकर मुस्कुरा रही हैं। पंछियों ने भी अपनी महफिल जमा ली है और ठंडी हवा का झोंका आपसे कह रहा है कि यार अब गर्मा गर्म कॉफी की चुस्की, चाय की चुस्की ले ही ली जाए। तो इस प्यारी सी सुबह को सुपर डुपर हिट बनाने आ गया है आपका अपना शो इट हैपेंस। जी, आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में हमेशा की तरह मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे सताक्षी, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ। दोस्तों, आज का ये दिन आपके पास दोबारा कभी लौट कर नहीं आने वाला है। आज का ये दिन 24 घंटे का बोनस है जो भगवान ने सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। तो फिर कल की अधूरी चिंताओं को दिलों में दबाकर आज के इस खूबसूरत तोहफे को क्यों खराब किया जाए। चेहरे पर एक बड़ी सी और कड़क सी मुस्कान सजाइए और मेरे साथ मिलकर कहिए वेलकम टुडे। और आइए अपनी फ्रेश वाइब्स को और भी फ्रेश करते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो प्रस्वानी 1701।

इट हैपेंस सुन रहे हैं आप रेडियो प्रस्थानी पर और इट हैपेंस में आपके साथ सताक्षी है। और इसके पहले कि हम सफर की शुरुआत करें, आइए विश करते हैं उनको जिनके लिए ये पल, ये दिन और ये वक्त बहुत ही खास है। जी हाँ, जिनका आज हैप्पी बर्थडे है। देखिए सताक्षी कभी भूलती नहीं आपको विश करना, है ना। सो जन्मदिन, आपका बर्थडे, आपको बहुत बहुत मुबारक। और बस इतनी सी विश है मेरी कि आप हमेशा जिंदगी में मुस्कुराते रहें। जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ढेरों ढेर शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। और बस यूं ही अपने दिन को अपने साथी के साथ स्पेशल बनाते रहिए, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं, लेकिन ये छोटे छोटे से जो पल आते हैं ना जिंदगी में, ये हमें ये बताते हैं कि यार किसी को ये बताना, ये जताना रोज नहीं हो पाता, ना सही, लेकिन आज तो हो कि हमें उससे बहुत मोहब्बत है। और जिनके लिए भी आज का दिन स्पेशल और खास है, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। चटते फटे लग जाइए काम पे और बस अपना बेस्ट दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं आपको अगले ट्रैक के साथ आगे लेकर, और सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी सताक्षी के साथ। आप इंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस।

इट्स में आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी पर और इट हैपेंस में आज भी आपके साथ कुछ बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत मॉर्निंग की जो हमारी और आपकी चटचट है वो चटचट लेकर मैं हाजिर हूँ। और यार किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता भाई साहब, हौसलों से उड़ान होती है। कई बार जब हम सुबह उठते हैं तो पूरे दिन की टू डू लिस्ट देखकर थक जाते हैं। ऐसा लगता है कि यार इतना सब कुछ कैसे होगा। लेकिन याद रखिए, पहाड़ चढ़ने के लिए भी पहला कदम तो उठाना पड़ता है ना। आज आप अपने काम की शुरुआत ये सोचकर मत कीजिए कि आपको कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना है, बल्कि ये सोचिए कि जो काम आपके हाथ में है उसे आज सबसे खूबसूरत तरीके से करना है। और इसी हौसले के साथ आइए आपको आगे लेकर चलती हूँ एक और गाने के साथ। अभी एंजॉय कीजिए और मेरे साथ एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस।

अच्छा, आप एनसीसी सफर को आप सताक्षी के साथ सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी पर, आपके मॉर्निंग ट्रैक्स जो रिपीट, और ये मॉर्निंग ट्रैक्स आपके इस पल को, आपके इस मॉर्निंग को आपके लिए बहुत बहुत अमेजिंग बना रहे हैं। वैसे अक्सर हम ऑफिस की डेडलाइंस, घर की जिम्मेदारियों के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं कि उस मशीन का ख्याल रखना ही भूल जाते हैं जो ये सारा काम कर रही है, यानी कि हमारी बॉडी। तो आज मैं आपके लिए कोई बहुत टफ योग या योगासन नहीं लेकर आई हूँ, बल्कि एक छोटी सी आदत बदलने की बात आपसे करने वाली हूँ। तो आज जब आप अपने ऑफिस में या अपने काम की सीट पर बैठे, तो हर एक घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए और एक गहरी लंबी सांस लीजिए। ये छोटी सी हैबिट ना आपके स्पाइन को तो बचाएगी ही, साथ ही आपके माइंड को भी तुरंत फ्रेश ऑक्सीजन देगी। सेहत दुरुस्त तो मूड भी मस्त, है ना? इसलिए अपने मूड और अपनी हेल्थ दोनों का ख्याल रखिए और एंजॉय कीजिए अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ, सुनते रहिए इट हैपेंस।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नो आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नो हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस। ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अ टन वीरे, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: डोंट रिस्क योर लाइफ, टॉक टू अतुल बिफोर यू टॉक टू पुलिस। अज्जी कॉन्टैक्ट करो अतुल जी नो ऑन 0400-234-235, दैट इज 0400-234-235।
2: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
4: वेलकम बैक, रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। आइए बढ़ते हैं गानों के हैट्रिक की ओर। जी हाँ, 3 बैक टू बैक ट्रैक्स एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई है सताक्षी। और ये गाने जो है ये एक बार फिर से सदाबहार गाने हैं, बॉलीवुड के वो गाने हैं, हमारे वो मॉर्निंग ट्रैक्स हैं जिन्हें आप हमेशा सुनना पसंद करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी, हमारे साथ सुनते रहिए गानों के हैट्रिक। ये पहला ट्रैक है आपके लिए।

0: तीन बैक टू बैक ट्रैक्स का हमारा सफर गानों की हैट्रिक इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ। गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक और इसके बाद होंगी ढेर सारी बातें आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं अभी गानों की हैट्रिक का ये तीसरा ट्रैक।
1: पत्थर है वो मुझे रोक टो।

सुन रहे हैं इट हैपेंस, आपकी अपनी होस्ट और दोस्त आरजे सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। अभी आप जब ये गाना सुन रहे थे तो मैंने एक कहानी देखी तो सोचा आपके साथ बांट लूं, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो एक बार क्या हुआ कि एक बड़ा ही आलिशान जहाज समंदर के बीचों बीच खराब हो गया। बड़े बड़े इंजीनियर्स आए, सबने मशीनें लगाई पर जहाज स्टार्ट नहीं हुआ। वो शिप जो है वो समंदर से आगे ही नहीं बढ़ रहा था, वो वहीं का वहीं जाम था। आखिर में एक बूढ़े मैकेनिक को बुलाया गया। उसने बहुत ध्यान से पूरे इंजन रूम को देखा, फिर अपने थैले से एक छोटा सा हथौड़ा निकाला और इंजन के एक खास हिस्से पर धीरे से टैप किया और फिर तो मैजिक हो गया। इंजन तुरंत गूंज उठा और शिप स्टार्ट हो गया। जब उसने बिल भेजा तो बिल 10,000 रुपए का था। देखकर मालिक को बड़ा अजीब लगा, छोटे से काम के लिए 10,000 रुपए। उसने कहा कि सिर्फ एक हथौड़ा ही तो मारा है, उसके 10,000 रुपए लोगे। बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हथौड़ा मारने के तो सिर्फ 10 रुपए हैं साहब, लेकिन हथौड़ा कहाँ और कितना तेज मारना है इसके 9,990 रुपए हैं। दोस्तों हमारी जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, मेहनत तो सब करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में की गई स्मार्ट मेहनत ही आपको दूसरों से अलग बनाती है। तो आज अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाइए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो प्रस्वानी 1701 एम।

सताक्षी के साथ आपका मॉर्निंग शो, आपका ब्रेकफास्ट शो इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। जानती हूँ धीरे धीरे वो वक्त आ गया है बहुतों के लिए और कुछ के लिए बस आने वाला है जब हर कोई आज की भाग दौड़ में लग जाएगा। कोई ऑफिस के लिए भागेगा तो कोई क्लास के लिए लेट होने लगेगा और कोई अपनी शॉप, अपने बिजनेस की ओर अपने कदम बढ़ाएगा। मुझे पता है कि आप इस वक्त इतनी भाग दौड़ में हैं कि आप भी हो सकता है कि शायद ट्रैफिक में फंस जाएं और फिर आपको बहुत चिढ़ हो। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हमें लेट होता है तो हम अगर ट्रैफिक में हो या कहीं भीड़ हो तो हम इरिटेट होने लगते हैं। तो ऐसे में अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो जरा रुकिए और एक बार बाहर सबको देखिए, धूप को देखिए, उस हलचल को देखिए। वो शहर जिसमें आप हैं ना दोस्तों, वो शहर जिंदा लोगों का है और आप भी इस खूबसूरत रफ्तार का हिस्सा हैं। तो रास्ते में अगर ट्रैफिक की वजह से आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है तो याद रखिए कि सिर्फ आपकी जिम्मेदारियां और आपके सपने नहीं है, इस सुबह के साथ हर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकला है, है ना। और वो जब आप सोचेंगे तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो आपको और ज्यादा गहरी नजर आएगी और आपका जो इरिटेशन है वो आपका साथ छोड़कर भाग जाएगा। स्टे ट्यून रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस और ये बातें हमारी आगे भी जारी रहेंगी इस ट्रैक के उस पार भी। आइए एंजॉय कीजिए इसे।

टीम में हां संदेश आलोक शर्मा तुसी सुन रहे हो रेडियो ब्रिसवानी 101.9 एम तिजबिला हो चुके हैं हुन तक ते हम खबरां दा ता फिर चलो करते हैं शुरुआत रुक करदे पंजाब दे वल जिथे पंजाब कांग्रेस विच बगावती तेवर विखा रहे जलंधर तो संसद मैंबर चरणजीत सिंह चन्नी नाल हाईकमान ने किनारा कर लिया है। चन्नी दिल्ली जाके राष्ट्रपति प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नाल मुलाकात करना चाहते सन पर उन्हां नूं समां नहीं मिलिया। इस बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने चंडीगढ़ विच विधायक राणा गुरजीत दे घर विच तीजी मीटिंग कीती। इस मीटिंग विच चरणजीत सिंह चन्नी सुखजिंदर सिंह रंधावा भारत भूषण आशू अते होर कई नेता भी शामिल होए। ए मीटिंग राणा गुरजीत दे घर करीब एक घंटा चली। मीटिंग तो बाद चन्नी धड़े दे सुर नरम पैंदे दिस रहे हन। हाईकमान नाल मुलाकात करन लई चन्नी धड़ा तैयार है। मीटिंग मगरों बाहर आके राणा गुरजीत ने वड्डा बयान दिंदे कहा है कि मेरी बघेल साहब नाल कोई मीटिंग जा कई फोन ते गलबात नहीं हुई। मेरी गलबात साडे सैकटरी सूरज ठाकुर नाल हुई है अते उन्हां नाल मिलके मुलाकात कीती जावेगी। कांग्रेस विच सब कुछ ठीक चल रहा है। राणा गुरजीत ने कहा है कि कोई डेडलॉक नहीं है। कांग्रेस का ऑल इज वैल है। जदों उन्हां नूं हाईकमान वालों राजा वड़िंग नूं प्रधान बनाउण बारे पुछा गया तां उन्हां कहा है कि यह साडा अंदरूनी मसला है तो तुसीं मेरे ते कोई गल थोप नहीं सकते। उन्होंने कहा है कि हाईकमान तो कोई भी बंदा बाहर नहीं चल रहा ते समा आउण ते सब कुछ सही हो जाएगा। उत्थे चन्नी धड़े दे सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि साडी किसी नाल कोई नाराजगी नहीं है। डिफेंस ऑफ ओपीनियन हो सकता है ते असीं भूपेश बघेल नाल मिलके सारी गल सामने रखांगे। सारी कांग्रेस इकट्ठी है। सारे इकट्ठे होके मसले हल करनगे। उधर दूजे पासे अमरीका अते ईरान विचाले वाधे फौजी तनाव कारण विश्व पद्धरी ऊर्जा सप्लाई ते गंभीर संकट दे बदल छा गए हन। अमरीकी सेना वालों लगातार दूजे दिन ईरान दे कई ठिकाणिया ते कीते गए हमलों तो बाद दुनिया दे सब तो अहम तेल सप्लाई मार्ग होर्मुज स्ट्रेट विच जहाजां दी आवाजाई लगभग रुक गई है। भारत समेत अद्धी दुनिया नूं तेल अते कुदरती गैस की सप्लाई इस रास्ते राही हुंदी है जिस कारण इस खेत्र विच वधे तनाव ने विश्व की चिंता वधा दिती है। डाटा फर्म केपलर दे आंकड़े अनुसार ताजा फौजी टकराव तो पहला रोजाना औसतन 35 तो 59 जहाज इस रास्ते राही गुजर रहे सन पर हुण यह गिनती घट के 20 तो भी घट रह गई है। इस समय ज्यादातर जहाज सिर्फ उस उत्तरी समुद्री मार्ग तो ही वरतों कर रहे हैं जिसनू ईरान ने मंजूरी दी हुई है जदों कि अमरीका ते ओमान दे समर्थन वाले दक्षणी कॉरीडोर विच आवाजाई नामात्र रह गई है। उधर दूजे पासे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके विच तनाव वधदा जा रहा है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी सरकार नूं 48 घंटियां दा अल्टीमेटम दिता है। जेएएसी ने पाकिस्तान सरकार नूं चेतावनी दिती है कि जेकर उस दी 38 मंगां ते ध्यान नहीं दिता गया तां उस नूं वड्डे पद्धर ते विरोध प्रदर्शनां दा सामना करना पवेगा। मौजूदा मुद्दा 27 जुलाई नूं होण वालियां खेतरी चोणां दा है। 9 जून तों नामजदगियां शुरू होण दे नाल जेएएसी ने मुजफ्फरबाद ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। उधर मोहाली दे सोहाणा दे गुरद्वारा सिंह शहीदां विच होए विवाद नूं हुण कानूनी रूप उसने लै लिया है। घटना दे करीब 10 दिनां बाद सोहाणा थाणा पुलिस ने कुटमार दे मामले विच 3 नहिंगां समेत 10 लोकां खिलाफ FIR दर्ज कीती है। नामजद मुलजमां विच जसदीप सिंह राणा बब्बर ते जसमीत सिंह शामिल हन जदों के 7 होरां दी पछाण कीती जा रही है। उधर अमरीका दे उत्तरी कैरोलीना सूबे तो एक दिल कंबाउण वाला मामला सामने आया जिथे भारतीय मूल दे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नूं अपनी पत्नी दे कतल दे दोष विच गिरफ्तार किया गया है। उसते 9 महीने पहला अपनी पत्नी दी हत्या करन दा दोष है। पुलिस ने दस्सिया है कि भारतीय इंजीनियर अविनाश नारने ने अपनी पत्नी रंजीता सविनेनी दा गला घुट के कतल कर दिता सी। कतल तो बाद दोषी ने अपनी पत्नी दी लाश दी एक फोटो भारत विच रहण वाली अपनी प्रेमिका नूं भेजी। पुलिस जांच तो बाद कतल दा मामला साफ होने तो बाद दोषी नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। 27 अक्तूबर 2025 नूं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नारने ने पुलिस नूं फोन करके दस्सिया सी कि उसकी पत्नी बाथरूम विच बंद है ते बाहर नहीं आ रही। जदों पुलिस ने बाथरूम दा दरवाजा तोड़िया तां उसने सविनेनी नूं फर्श ते पाया। अधिकारियां ने उस नूं मौके ते मृतक ऐलान दिता। पुछगिछ दौरान नारने ने पुलिस नूं दस्सिया कि ओह किसे काम लई
अपार्टमेंट तो बाहर गया सी जो लगभग 40 मिनट बाद घर वापस आया तो उसने सभी ने इन्हें बाथरूम विच बंद पाया। हालांकि अधिकारियों घर विच किसी होर दे दाखिल होने का कोई सबूत नहीं मिलिया जदों के नाने बाहर सी। अगले दिन किंग काउंटी मेडिकल एग्जामिनर दे दफ्तर ने सबनेनी दी मौत नू कतल करार दिता। ए कहंदे होए कि उसकी मौत गला कुटन कारण साह बंद होने नाल हुई है। जांच से तो पता लग्या कि नाल ने कई सालों तो भारत विच एक औरत नाल संबंधा विच सी। उस नाल संबंधा विच रहंदे होए नाने ने 5 जून 2025 नू सबनेनी नाल व्याह कीता। अधिकारियों ने दस्या है कि नाने दी प्रेमिका भी उन्हां दे व्याह विच शामिल हुई सी। हालांकि उन्हां दा रिश्ता सबनेनी नाल उसके व्याह तो बाद भी जारी रहा। घटना वाले दिन नाने ने अपनी प्रेमिका नू घट्टो घट 4 बार फोन किया जिस विच ओ समा भी शामिल है जदों उसने पुलिस नू दस्या सी कि ओ एक बंद बाथरूम विच दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। अधिकारियों ने दस्या कि नाने ने अपनी पत्नी की लाश की एक फोटो अपनी प्रेमिका नू भी भेजी सी। अधिकारियों नू जांच दौरान सबनेनी द्वारा नाने नू भेजे गए टैक्सट सुनेहे भी मिले जिस विच उसने वार वार शिकायत की कि नाने द्वारा उसके लिए बनाए गए पीण वाले पदार्थ कौले सन। सबनेनी ने मौत दे दिन अपनी पति अपने पति नू टैक्सट करके कहा कि उस द्वारा बनाए गए स्मूदी का स्वाद दवाई और खंघ की शरबत वर्गा सी। 5 जुलाई नू नाने ने पहली डिग्री कतल का दोष लग्या है। अधिकारियों का कहना है कि उसनू उम्र कैद की सजा हो सकती है। तो हुण तक दे अहम खबरां विच बस इना ही। खबरां दी वधेरे जानकारी ते सुझाव देने लई तुसीं साडे नाल जुड़ सकते हो, संपर्क कर सकते हो, तुसीं सानूं ईमेल भी कर सकते हो। साडी ईमेल आईडी है bruswani@bruswani.com। इस दे नाल ही तुसीं साडे नाल साडे फेसबुक पेज दे जरिए भी जुड़ सकते हो। साडा फेसबुक पेज है रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 FM। फिर हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरां लैके। तकली दे इजाजत, सत श्री अकाल।

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बड़े हो जी थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बिसानी 101.1 FM ते जी अच्छे संदेश अलग दे नाल बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा बहुत ही ज्यादा सोहना च वेला शुरू हो चुका है जी। ते इस वेले दे दौरान असीं गल्लां तां करनियां ही करनियां ने, नालों नाल इन्हां गल्लां नूं असीं पंजाबी गीतां दा तड़का भी जरूर लगाउणा है। तुसीं की कहना है, तुसीं जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बिसानी 101.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी ते bisani@bisani.com साडी ईमेल आईडी है। जरिए जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा तुसी ओ अपनाओ, पर साडा नाल गल्लबात जरूर करो। फटाफट दे नाल अपना फोन चक लो, जुड़ना शुरू कर दो, अपनियां फरमाइशां भेजो या करो दिल दीआं गल्लां। जिवें भी जुड़ना है ओ जुड़ो ते नवें पुराने गीत मैं तुहानूं सुणाउंदी रहूंगी। अज्ज इक बेहद खास जी गल करनी है तुहाडे नाल करूंगी, पर पहले गीत सुनो।

हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो कोक स्टूडियो भारत ने ना अपना नवा गीत कचौड़ी गली जा तो रिलीज किया है ना, हर कोई इसे गाने की गल कर रहा है। भोजपुरी लोक गीत का सब तो सुंदर मनिया जाने वाला यह गाना रेखा भारद्वाज ने गाया है। गाने का नवा वर्जन कचौड़ी गली हर किसी की जुबान से छाया होया है जो लोग संगीत ते आधारित है। इस बार शो ने भोजपुरी दी लह विच बनारस दी गलियां दी धुन प्रस्तुत की है। एक सदी तो भी वध पुरानी कचौड़ी गली गाने नू रेखा भारद्वाज ते बिहार दे इंडी लोक गायक उपल उदित ने गाया ते निशांत नागर ने इस नू तैयार किया। ये गाना ना एक अजिहे समय ते कहानी नू पुनर्जीवित करता है जो कदे होया करता सी। एक अजिहे गाने नू जो एक सदी तो वध समय दी परंपरा दसदा है। ते अज इस गाने दी पूरी कहानी मैं दसदी हैगी आ तुहानू कि किवें किस दौर दे विच लिखिया गया सी, की कुछ होया सी, इस शुरुआत किवें सी। इस दी शुरुआत इस लाइन नाल हुंदी है कि सेजिया पे लोटे काला राग। बड़ा सोहना जिहा गीत हैगा, तुसी जरूर सुनियो। पर मैं तुहानू इस दी कहानी मैं सुना दिंदी आ, गीत तुसी यूट्यूब ते जरूर सुनियो।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती
4: है। नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700, द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस, ओन्ड आउटराइट, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: साधुआ।

0: जी जी अनु जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 1.01 FM ते जी आरजे संदेश अलग दे नाल तुसी बने हुए हो। देखो बनारस की तवायफ गौहर जान का प्यार हुण इस दी गल करनी तां बनदी बनदी है। देखो जे गल करिए ना उन्हां नाल कोई गलबात नहीं हुई पर उन्हां ते लट्टू सी। कौन ओ जिन्हां दी गौहर जान दी गल चल रही हैगी ते जिस इंसान नूं मिले सी मैं पहला दस्सिया सी ना नाम नाम सी असलम ते लट्टू सी ते उन्हां दी गहरे प्यार करन लगी सी। एक दिन ना बहुत डूंघा प्यार एक दिन ओ गायब हो गए। पुछताछ करन ते उन्हां नूं पता चलिया कि ओ मिर्जापुर काम करन गए हैगे ने इसलिए गाने विच उन्हां दा जिक्र हैगा है। दिल्ली स्थित भोजपुरी संगीत अते साहित्य दे विशेषज्ञ जिहड़े माहिर हैगे ने निराला विदेशिया ओ कहिंदे ने कि बहुत बाद विच उन्हां नूं पता लग्या कि अंग्रेजां ने उन्हां नूं रंगून भिजवा दिता। इस गाने विच अगे दी लाइन इसे ते हैगी है इस नाल पता चलदा है कि अपने प्रेमी दे लई किस हद तक जान नूं तैयार सी।
1: Show mercy on it.

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: Digicel, better together.
2: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
3: Samsung ki mala pe sim room hai.
4: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.

हाँ जी, तक पर फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 ते जी आप जी संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। गाने विच गिरमिटिया गीत भी कहते हैं गाने ना इस नू। इस गाने नाल जुड़ी एक होर कहानी यह हैगी है कि एक गिरमिटिया गीत है जिसनों विदेश भेजे गए बंधुआ मजदूरां दे पलायन ते आधारित मनिया जाता है। इस तो इस विच ना कई लोगों का पलायन घट मजदूरी ते काम लभण दे लई होया सीगा। इस गीत नू उस दौर नाल भी जोड़िया गया हैगा। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान अपने संगीत प्रोग्रामा विच कजी बजाउंदे है सीगे ते अक्सर कहंदे सी कि उन्होंने इस नू बनारस विच अपने बचपन विच सुनिया सी। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी एक कजरी गाए हैगे ने ते अपनी किताब चंदन किवाड़ विच गौहर खान दी कहानी दा गौहर जान दी कहानी दा जिक्र भी किया है।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 FM ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो एक गाना ना कचौड़ी गली है जड़ा, एक गाना पूर्वी उत्तर प्रदेश ते बिहार के कुछ हिस्सों में फैले पूर्वांचल ते तो हजारा पुरुषों के पलायन का भी मतलब संबंध रखता है, जो 19वीं सदी दे विच ना एग्लो बर्मी युद्ध के दौरान शुरू होया सी। हजारा आम नागरिकां नू अंग्रेजां वल्लों ना जबरदस्ती रंगून या बर्मा विच सिपाही बना के भेजा गया सी। 1824 तो 1937 तक बर्मा ब्रिटिश शासन के अधीन सी। हालांकि गाने विच उड़ल जहजवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर इस पर ना जेड़े पुरुष सीगे नू अक्सर भीड़ भाड़ वाले स्टिमशियों विच भेजा जांदा सी, जो कदे कलकत्ता तो रवाना हुंदे सीगे।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचन वेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर देते हां। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 107.1 ते जी अच्छे संदेश अलग दराल से बने हुए हो। हुण देखो कचौड़ी गली बारे में तो इन्ना कुछ दसता हैगा है, तुसी देखियो जरूर एक बारी गीत ते तुसी जिहड़े घर दे विच बुजुर्ग होणगे ना शायद उन्हां नूं कुछ पता होवे या फिर गूगल करियो तो थानू पता लग जाना है कि यह गल्ला कि सच है कि ने। हुण देखो इस दे नाल होर भी गल्ला है ने जुड़िया हुई जिवें 1885 दे युद्ध दा जिक्र 40,000 सैनिका दे विचों ना 15,000 मलेरिया पेचिश ते घने जंगलां विच होई लड़ाई दे कारण शहीद हो गए सी। हालांकि युद्ध 1885 विच खत्म हो गया सी पर ब्रिटिश जिहड़ियां नीतियां सीगियां उन्हां दे कारण 1900 दे दहाके विच भी पलायन जारी रहा। युद्ध ने व्यापक आर्थिक अस्थिरता लिया दी सी ते बर्मा विच बंदरगाह शहरां विच रोजगार दे अवसर उपलब्ध सी। इन्हां लोकां ने बंदरगाहां चौलां दीआं मिलां ते दिहाड़ी मजदूरां दे रूप विच काम कीता। बर्मा ब्रिटिश प्रणाली यानी कि काला पानी दे लई मशहूर सी इह। इस दे तहत भारतीय कैदियां नूं अंडमान ते सैलूलर जेल विच कैद कीता जांदा सीगा।

हाँ जी तो देखो वेला तो हो चुका है थोड़े तो इजाजत लैन का, पर हूँ गल एक होर दसनी सी विदेसिया जी की। विदेसिया जी की गल ये दसनी सी कचौड़ी गली दे नाल जुड़ी हुई कि विदेसिया जी कहते हैं कि अज भी वर्मा तो लौट रहे मुड़े कई लोग अपने सरनेम के तौर पर वर्मा का इस्तेमाल करते हैं। यह दिलचस्प है कि गाने के नवे वर्जन ने सदियां पुराने भोजपुरी लोग गीतों के इतिहास में ना किवें ताजा कर दिता है। हुण तुसीं ये गीत सुन लिया हैगा या नहीं, तुसीं फटाफट दे नाल दसो ते होर दसो कि किस गीत की तुसी पिछे की कहानी तुसी जानना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे गीत है अजिहे जिन्हां दे पिछे बहुत लंबी कहानी हैगी है। तुसी जरूर दसो ते जुड़ते रहो रेडियो प्रसवानी फेसबुक पेज है जी प्रसवानी प्रसवानी .com साडी ईमेल आईडी है जरिए जिहड़ा भी अपनाउणा होए अपनाओ, पर साडे नाल गल्लबात जरूर करते रहो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू करो, मैं कल करूंगी मुलाकात। रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: KR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
1: Oye Rahul, vire tere case da ki hoya?
2: Oh yara, main bahut worried ha. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience ha. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience ha. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अ टन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: अनु।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी।
3: डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance. Owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: फिल्मों के क्लाइमैक्स में हीरो जीतता है और लड़की ले जाता है, असल जिंदगी में विलेन।
1: ए विलेन।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: गैरतमंद कोल दो ही चीजा हुंदिया ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो देख रो इनेज सरपंच।
1: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसे राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
0: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरपाल सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।

0: मम्मी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

न बदला में न बदला।

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की जपी अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोचकर पिछला और अगला

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन LNP कन्वेंशन में प्रीमियर का बड़ा ऐलान, ब्रीच बेल गो टू जेल। जी हाँ, कन्वेंशन में LNP कन्वेंशन में क्वींसलैंड के प्रीमियर डेविड क्रिस्फोली ने युवा अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक कड़े कानून का ऐलान किया है। नए कानून के नाम का नाम है ब्रीच बेल गो टू जेल। इसके तहत अगर कोई गंभीर अपराध का आरोपी जमानत पर बाहर रहने के दौरान दोबारा अपराध करता है तो उसे अनिवार्य रूप से जेल जाना होगा। वहीं नए यूथ जस्टिस कानून का तीखा विरोध शुरू। जी हां, प्रीमियर के इस फैसले के बाद ब्रिस्बेन और पूरे क्वींसलैंड में मानवाधिकार और स्वदेशी कानूनी संस्थाओं ने इस कानून का बड़ा विरोध शुरू कर दिया है। नेशनल ऑफ एबोरिजिनल एंड टोरस स्ट्रेट आइलैंडर लीगल सर्विसेज का कहना है कि अधिक बच्चों को जेल में डालने से समाज सुरक्षित नहीं होगा। वहीं ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई योजना। क्वींसलैंड सरकार ने ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट के बीच टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए एक नया रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत इंटरनेशनल फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी और लोकल टूरिज्म ऑपरेटर्स को विशेष ग्रांट दी जाएगी। वहीं ब्रिस्बेन में फर्स्ट नेशंस कुकरी कोर्स की शुरुआत। ब्रिस्बेन और आसपास के इलाकों में संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक नया फर्स्ट नेशंस कुकरी कोर्स शुरू हो गया है। इसका मकसद वहां के पारंपरिक खानपान और कुकिंग स्टाइल्स को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। वहीं बच्चों के लिए डांस प्रोग्राम का बजट खत्म, बंद होने की कगार पर। ब्रिस्बेन से एक थोड़ी मायूस करने वाली खबर भी है। एबोरिजिनल बच्चों को उनकी संस्कृति से जोड़ने वाला एक बेहद पॉपुलर कम्युनिटी डांस प्रोग्राम फंडिंग खत्म होने की वजह से बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। वहीं डॉकर रिवर बैंड का लाइव म्यूजिक टूर। जी हाँ, बुलेटिन के आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक एंटरटेनमेंट की खबर है। मशहूर डॉकर रिवर बैंड इस समय अपने गट्स टूर 2026 के तहत लाइव कॉन्सर्ट्स कर रहा है। ब्रिस्बेन के पास के इलाकों में भी इनके शो होने वाले हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले मुंबई और गुजरात में भारी बारिश का कहर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मौसम के मिजाज से। मुंबई और दक्षिण गुजरात में मानसूनी बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग IMD ने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से हालात बिगड़े। उत्तर पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश से भी मौसम को लेकर चिंताजनक खबर है। वहां लगातार हो रही भारी बारिश के बाद अचानक आए बाढ़ और लैंडस्लाइड्स की वजह से करीब 26 जिलों के 333 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं उत्तर भारत को गर्मी से राहत, दिल्ली में बदला मौसम। राहत की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल रात से हुई तेज बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दी है। तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया हैंडलूम हैकाथॉन 2026। कपड़ा मंत्रालय ने आज देश के बुनकरों और हैंडलूम सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का चैलेंज हैंडलूम हैकाथॉन 2026 लॉन्च किया है। वहीं भारत और आसियान यानी कि ASEAN के बीच बड़ी व्यापारिक बैठक। जी हां, भारत आज नई दिल्ली में आसियान भारत गुड्स ट्रेड एग्रीमेंट की 13वीं ज्वाइंट कमेटी मीटिंग होस्ट कर रहा है। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा भारत और आसियान देशों के साथ व्यापारिक नियमों को आसान बनाना है। वहीं केदारनाथ बद्रीनाथ में डोनेशन की जांच के लिए कमेटी गठित। राम मंदिर के बाद अब यहां भी तहकीकात जो है वो होनी शुरू हो गई है। इसी के साथ अब सीधा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले पैसिफिक ओशन में चीन का मिसाइल टेस्ट, बढ़ा तनाव। ग्लोबल खबरों की बात करें तो चीन ने पैसिफिक ओशन में अपनी एक न्यूक्लियर सबमरीन से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। हालांकि इस मिसाइल में डमी वॉरहेड था, लेकिन इस टेस्ट के बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई देशों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी पर दर्ज की चार्जशीट। अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी गोल्डी बराड के खिलाफ लॉस एंजलिस में चार्जशीट दायर कर दी है। इसी के साथ इंडोनेशिया में पीएम मोदी का बड़ा बयान, टू स्टेट सॉल्यूशन ही रास्ता। इंडोनेशिया के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मिलकर कई समझौतों पर साइन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसराइल फिलिस्तीन विवाद को सुलझाने का एकमात्र तरीका टू स्टेट सॉल्यूशन ही है। वहीं वेनेजुएला में भूकंप के बाद अमेरिका की बड़ी मदद। वेनेजुएला में हाल ही में आए विनाशकारी भूकंप के बाद वहां हालात बेहद खराब हैं। अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। इसी के साथ एआई बूम से सैमसंग के मुनाफे में 1800% का उछाल। बिजनेस की दुनिया से एक हैरान करने वाली खबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती डिमांड की वजह से साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इस तिमाही में करीब 1800% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं नाटो समिट के लिए तुर्की पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो समिट में हिस्सा लेने के लिए तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंच गए हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले स्विट्जरलैंड पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में। जी हां, स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी खबर, फीफा वर्ल्ड कप 2026 से स्विट्जरलैंड की टीम ने एक रोमांचक मुकाबले में कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर इतिहास रच दिया। साल 1954 के बाद यह पहली बार है जब स्विट्जरलैंड की टीम वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। वहीं फीफा वर्ल्ड कप स्पेन ने पुर्तगाल को किया बाहर। जी हां, वर्ल्ड कप के एक और बड़े नॉकआउट मुकाबले में स्पेन ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। वहीं यूएसएल चैंपियनशिप सैन क्रेमेंटो रिपब्लिक और रोड आइलैंड का मैच आज। जी हां, यूएसए की बड़ी फुटबॉल लीग यूएसएल चैंपियनशिप में आज सैन क्रेमेंटो रिपब्लिक एफसी का मुकाबला रोड आइलैंड एफसी से होने जा रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलियन इंडोर चैंपियनशिप 2026 के ड्रॉ घोषित। लोन बाउल्स के खेल से खबर है कि ऑस्ट्रेलियन इंडोर चैंपियनशिप 2026 के ऑफिशियल ड्रॉ आज जारी कर दिए गए हैं। ये टूर्नामेंट अगले महीने यानी कि अगस्त में क्लब ट्वीट में खेला जाएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: Samsung ki mala pe sim room hai.
3: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane. LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert. performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
4: ਭੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
5: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
4: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।
6: ਹਨੀ, ਇਹ ਤੁਮ ਕਹਾਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
7: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
6: ऐसा क्या खास है वहाँ?
7: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
6: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
7: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
8: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: जवानी दीवानी थोड़ी आग है थोड़ा सा पानी।
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: Thank you.

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस। ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस.

0: और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

जी मैं हां संदेश अलक शर्मा तुसे सुन रहे हो रेडियो ब्रिसोनी 107.1 एम तिजबिला हो चुके हैं हुन तक ते हम खबरां दा ता फिर चलो करते हैं शुरुआत रुक करदे पंजाब दे वल जिते पंजाब कांग्रेस विच बगावती तेवर विखा रहे जलंधर तो संसद मैंबर चरणजीत सिंह चन्नी नाल हाईकमान ने किनारा कर लिया है। चन्नी दिल्ली जा के राष्ट्रपति प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे प्रियंका गांधी अते राहुल गांधी नाल मुलाकात करना चाहते सन पर उन्हां नूं समां नहीं मिलिया। इस तों बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने चंडीगढ़ विच विधायक राणा गुरजीत दे घर विच तीजी मीटिंग की। इस मीटिंग विच चरणजीत सिंह चन्नी सुखजिंदर सिंह रंधावा भारत भूषण आशू अते होर कई नेता भी शामिल होए। ए मीटिंग राणा गुरजीत दे घर करीब एक घंटा चली। मीटिंग तो बाद चन्नी धड़े दे सुर नरम पैंदे दिस रहे हन। हाईकमान नाल मुलाकात करन लई चन्नी धड़ा तैयार है। मीटिंग मगरों बाहर आके राणा गुरजीत ने वड्डा बयान दिंदे कहा है कि मेरी बघेल साहब नाल कोई मीटिंग जा कई फोन ते गलबात नहीं हुई। मेरी गलबात साढ़े सैकटरी सूरज ठाकुर नाल हुई है अते उन्हां नाल मिलके मुलाकात की जाएगी। कांग्रेस विच सब कुछ ठीक चल रहा है। राणा गुरजीत ने कहा है कि कोई डेडलॉक नहीं है, कांग्रेस दा ऑल इज वेल है। जदों उन्हां नूं हाईकमान वल्लों राजा वड़िंग नूं प्रधान बनाउण बारे पुछया गया तां उन्हां कहा है कि इह साडा अंदरूनी मसला है तो तुसीं मेरे ते कोई गल थोप नहीं सकते। उन्हां कहा है कि हाईकमान तो कोई भी बंदा बाहर नहीं चल रहा ते समां आउण ते सब कुछ सही हो जाएगा। उत्थे चन्नी धड़े दे सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि साडी किसी नाल कोई नाराजगी नहीं है, डिफेंस ऑफ ओपीनियन हो सकता है अते असीं भूपेश बघेल नाल मिलके सारी गल सामने रखांगे। सारी कांग्रेस इकट्ठी है, सारे इकट्ठे होके मसले हल करनगे। उधर दूजे पासे अमरीका अते ईरान विचाले वाधे फौजी तनाव कारण विश्व पद्धरी ऊर्जा सप्लाई ते गंभीर संकट दे बदल छा गए हन। अमरीकी सेना वालों लगातार दूजे दिन ईरान दे कई ठिकाणिया ते कीते गए हमलों तो बाद दुनिया दे सब तो अहम तेल सप्लाई मार्ग होर्मुज स्ट्रेट विच जहाजा की आवाजाई लगभग रुक गई है। भारत समेत अद्धी दुनिया नूं तेल अते कुदरती गैस की सप्लाई इस रास्ते राही हुंदी है, जिस कारण इस खेत्र विच वधे तनाव ने विश्व की चिंता वधा दिती है। डाटा फर्म केपलर दे आंकड़े अनुसार ताजा फौजी टकराव तो पहला रोजाना औसतन 35 तो 59 जहाज इस रास्ते राही गुजर रहे सन, पर हुण यह गिनती घट के 20 तो भी घट रह गई है। इस समय ज्यादातर जहाज सिर्फ उस उत्तरी समुद्री मार्ग तो ही वरतों कर रहे हैं जिस नूं ईरान ने मंजूरी दी हुई है, जदों कि अमरीका ते ओमान दे समर्थन वाले दक्षणी कॉरीडोर विच आवाजाई नामात्र रह गई है। उधर दूजे पासे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके विच तनाव वधदा जा रहा है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी सरकार नूं 48 घंटियां दा अल्टीमेटम दिता है। जेएएसी ने पाकिस्तान सरकार नूं चेतावनी दिती है कि जेकर उस दीआं 38 मंगां ते ध्यान नहीं दिता गया तां उस नूं वड्डे पद्धर ते विरोध प्रदर्शनां दा सामना करना पवेगा। मौजूदा मुद्दा 27 जुलाई नूं होण वालियां खेतरी चोणां दा है। 9 जून तों नामजदगियां शुरू होण दे नाल जेएएसी ने मुजफ्फरबाद ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। उधर मोहाली दे सोहाणा दे गुरद्वारा सिंह शहीदा विच होए विवाद नूं हुण कानूनी रूप उसने लै लिया है। घटना दे करीब 10 दिनां बाद सोहाणा थाणा पुलिस ने कुटमार दे मामले विच 3 नहिंगा समेत 10 लोकां खिलाफ FIR दर्ज कीती है। नामजद मुलजमां विच जसदीप सिंह राणा बब्बर ते जसमीत सिंह शामिल हन, जदों के 7 होरां दी पछाण कीती जा रही है। उधर अमरीका दे उत्तरी कैरोलीना सूबे तो एक दिल कंबाउण वाला मामला सामने आया, जिथे भारतीय मूल दे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नूं अपनी पत्नी दे कतल दे दोष विच गिरफ्तार किया गया। उसते 9 महीने पहला अपनी पत्नी दी हत्या करन दा दोष है। पुलिस ने दस्सिया कि भारतीय इंजीनियर अविनाश नारने ने अपनी पत्नी रंजीता सविनेनी दा गला घुट के कतल कर दिता सी। कतल तो बाद दोषी ने अपनी पत्नी दी लाश दी एक फोटो भारत विच रहण वाली अपनी प्रेमिका नूं भेजी। पुलिस जांच तो बाद कतल दा मामला साफ होने तो बाद दोषी नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। 27 अक्तूबर 2025 नूं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नारने ने पुलिस नूं फोन करके दस्सिया सी कि उसकी पत्नी बाथरूम विच बंद है ते बाहर नहीं आ रही। जदों पुलिस ने बाथरूम दा दरवाजा तोड़िया तां उसने सविनेनी नूं फर्श ते पाया। अधिकारियां ने उस नूं मौके ते मृतक ऐलान दिता। पुछगिछ दौरान नारने ने पुलिस नूं दस्सिया कि ओ किसे काम लई
अपार्टमेंट तो बाहर गया से जो लगभग 40 मिनट बाद घर वापस आया तो उसने सभी ने इन्हें बाथरूम बंद पाया। हालांकि अधिकारियों घर किसी होर के दाखिल होने का कोई सबूत नहीं मिले जदों के नान बाहर सी। अगले दिन किंग काउंटी मेडिकल एग्जामिनर दे दफ्तर ने सबनेनी दी मौत नू कतल करार दिता। ए कहंदे होए कि उसकी मौत गला कुटन कारण साह बंद होण नाल होई है। जांच से तो पता लग्या है कि नाल ने कई सालों तो भारत विच एक औरत नाल संबंधा विच सी। उस नाल संबंधा विच रहंदे होए नाणे ने 5 जून 2025 नू सबनेनी नाल व्याह कीता। अधिकारियों ने दस्या है कि नाणे दी प्रेमिका भी उन्हां दे व्याह विच शामिल होई सी। हालांकि उन्हां दा रिश्ता सबनेनी नाल उसके व्याह तो बाद भी जारी रहा। घटना वाले दिन नाणे ने अपनी प्रेमिका नू घट्टो घट्ट 4 बार फोन किया जिस विच उह समां भी शामिल है जदों उसने पुलिस नू दस्या सी कि उह एक बंद बाथरूम विच दाखिल होण दी कोशिश कर रहा है। अधिकारियों ने दस्या कि नाणे ने अपनी पत्नी की लाश की एक फोटो अपनी प्रेमिका नू भी भेजी सी। अधिकारियों नू जांच दौरान सबनेनी द्वारा नाणे नू भेजे गए टैक्सट सुनेहे भी मिले जिस विच उसने वार वार शिकायत की कि नाणे द्वारा उसके लिए बनाए गए पीण वाले पदार्थ कौले सन। सबनेनी ने मौत दे दिन अपनी पति अपने पति नू टैक्सट करके कहा कि उस द्वारा बनाए गए स्मूदी का स्वाद दवाई अते खंघ दी शरबत वर्गा सी। 5 जुलाई नू नाणे ने पहली डिग्री कतल का दोष लग्या है। अधिकारियों का कहना है कि उस उम्र कैद की सजा हो सकती है। तो हुण तक दे अहम खबरां विच बस इना ही। खबरां दी वधेरे जानकारी ते सुझाव देने दे लई तुसीं साडे नाल जुड़ सकते हो, संपर्क कर सकते हो, तुसीं सानूं ईमेल भी कर सकते हो। साडी ईमेल आईडी है bruswani@bruswani.com। इस दे नाल ही तुसीं साडे नाल साडे फेसबुक पेज दे जरिए भी जुड़ सकते हो। साडा फेसबुक पेज है रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 FM। फिर हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरां लैके। तक दे इजाजत, सत श्री अकाल।

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। हां तुसी बड़े होए जी थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बिसानी 101 एम ते चार छे संदेश शोलक दे नाल से बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही ज्यादा सोहना च वेला शुरू हो चुका है जी। ते इस वेले दे दौरान असी गल्लां तां करनियां ही करनियां ने, नालो नाल इन्हां गल्लां नूं असी पंजाबी गीतां दा तड़का भी जरूर लगाउणा है। तुसी की कहना है, तुसी जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बिसानी 101 एम साडा फेसबुक पेज है जी ते bisaniabisani.com साडी ईमेल आईडी है। जरिए जेहड़ा तुहानूं चंगा लगदा तुसी ओ अपनाओ, पर साडा गलबात जरूर करो। फटाफट दे नाल अपना फोन चक लो, जुड़ना शुरू कर दो, अपनी फरमाइशा भेजो या करो दिल दियां गल्लां। जिवें भी जुड़ना है ओ जुड़ो ते नवे पुराने गीत मैं तुहानू सुणाउंदी रहूंगी। अज्ज एक बेहद खास जी गल करनी है तुहाडे नाल करूंगी, पर पहले गीत सुनो।

हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.9 ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। देखो कोक स्टूडियो भारत ने ना अपना नवा गीत कचौड़ी गली जा तो रिलीज किया ना, हर कोई इस गाने की गल कर रहा है। भोजपुरी लोक गीत का सब तो सुंदर मनिया जाने वाला यह गाना रेखा भारद्वाज ने गाया है। गाने का नवा वर्जन कचौड़ी गली हर किसी की जुबान से छाया होया है जो लोग संगीत ते आधारित है। इस बार शो ने भोजपुरी दी लह विच बनारस दियां गलियां दी धुन प्रस्तुत कीती है। एक सदी तो भी वध पुरानी कचौड़ी गली गाने नू रेखा भारद्वाज ते बिहार दे इंडी लोक गायक उपल उदित ने गाया ते निशांत नागर ने इसनू तैयार कीता है। ये गाना ना एक अजिहे समय ते कहानी नू पुनर्जीवित करता है जो कदे होया करता सी। एक अजिहे गाने नू जो एक सदी तो वध समय दी परंपरा दसदा है। ते अज इस गाने दी पूरी कहानी मैं दसदी हैगी थानू कि किवें किस दौर दे विच लिखिया गया सी, की कुछ होया सी, इस शुरुआत किवें सी। इस दी शुरुआत इस लाइन नाल हुंदी है कि सेजिया पे लोटे काला राग। बड़ा सोहना जिहा गीत हैगा, तुसीं जरूर सुनियो। पर मैं थानू इस दी कहानी मैं सुना दिंदी हां, गीत तुसीं यूट्यूब ते जरूर सुनियो।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। प्री सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.1 FM ते चार छे संदेश अलग दराल से बने हुए हो। अगली जेड़ी गल हैगी है वह है तवायफ गौहर जान की। गौहर जान प्यार विच दर्द चो गुजरी सी, ये कहा जाता है ते कहा जाता है कि कहानी कितने ना कितने उसकी है। मनिया जाता है कि यह कजरी यानी कि मानसून विच गाया जाने वाला एक लोक गीत 19वीं शताब्दी विच बनाया गया सी। यह गीत एक औरत दे विरह दे दर्द नूं बयां करता है। इस औरत नूं तवायफ कहंदे हैगे लोग, सानूं नहीं पता, कहंदे हैगे ने, रिपोर्ट्स कहंदियां ने। कई रिपोर्ट्स मुताबिक ना यह कहानी लगभग 200 साल पहला किसी गौहर जान दी सी, जो बनारस दी दाल मंडी विच रहिंदी सी ते इक तवायफ सी। अजिहा मन्निया जांदा है कि वह कचौड़ी गली विच अपनी पालकी विच घूमण जांदी सी ते चौक दे कोलों गुजरदे समय ना, जदों लंघदे समय ना, उन्होंने असलम नाम दा एक आदमी उन्हां नूं मिलिया सीगा। उत्थों ही तां कहानी शुरू हुई सी। दसदी हां उस बारे होर ज्यादा डिटेल्स दे विच, पर पहला सुनो एक गीत।

0: सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: आप माने या ना माने बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: बनती बनती है। देखो जे गल करिए ना, उन्होंने कोई गलबात नहीं हुई, पर वो उन्होंने लट्टू सी। कौन? वो जिन्हों की गौहा जान की गल चल रही हैगी, जिस इंसान को मिले से, मैं पहला दस्या सी ना, नाम नाम से असलम, असलम ते लट्टू सी, ते उन्होंने गहरे प्यार करन लगी सी। एक दिन ना, बहुत डूंगा प्यार, एक दिन वो गायब हो गए। पूछताछ करन ते उन्होंने पता चलिया कि वो मिर्जापुर काम करन गए हैगे ने, इसलिए गाने विच उन्हों का जिक्र हैगा। दिल्ली स्थित भोजपुरी संगीत अते साहित्य दे विशेषज्ञ जने माहिर हैगे ने निराला विदेसिया, वह कहते हैं कि बहुत बाद में उन्होंने पता लग गया कि अंग्रेजा ने उन्होंने रंगून भिजवा दिता। इस गाने विच अगे दी लाइन इसे ते हैगी है, इस नाल पता चलता है कि अपने प्रेमी दे लई किस हद तक जान नू तैयार सीगी।
1: Show mercy on it.

जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 FM ते जी आर जे संदेश अलग दे नाल तुसी बने हुए हो। देखो बनारस की तवायफ गौहर जान का प्यार हुण इस दी गल करनी।

हाँ जी, तक पर फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 FM ते जी आप जी संदेश अलग दिनाल से बने हुए गाने विच गिरमिठिया गीत भी कहते हैं गाने ना इस नू इस गाने नाल जुड़ी एक होर कहानी यह हैगी है कि एक गिरमिठिया गीत है जिसनों विदेश भेजे गए बंधुआ मजदूरां दे पलायन ते आधारित मनिया जाता है। इस तो इस विच ना कई लोगों का पलायन घट मजदूरी ते काम लभण दे लई होया सीगा। इस गीत नू उस दौर नाल भी जोड़िया गया हैगा। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान अपने संगीत प्रोग्रामा विच कजी बजाउंदे है सीगे ते अक्सर कहंदे सी कि उन्होंने इस नू बनारस विच अपने बचपन विच सुनिया सी। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी एक कजरी गाए हैगे ने ते अपनी किताब चंदन किवाड़ विच गौहर खान दी कहानी दा गौहर जान दी कहानी दा जिक्र भी किया है।

0: ਬਿਸਮਤ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
1: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
0: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नु तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
2: ये तुम कहां ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

हाँ जी, तक फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 FM ते चार छे संदेश अलग दिन आल से बने हुए। देखो एक गाना ना कचौड़ी गली है जड़ा, एक गाना पूर्वी उत्तर प्रदेश ते बिहार के कुछ हिस्सों विच फैले पूर्वांचल ते तो हजारा पुरुषों के पलायन का भी मतलब संबंध रखता है, जो 19वीं सदी दे विच ना एग्लो बर्मी युद्ध के दौरान शुरू होया सी। हजारा आम नागरिकां नूं अंग्रेजां वल्लों ना जबरदस्ती रंगून या बर्मा विच सिपाही बना के भेजा गया सी। 1824 तो 1937 तक बर्मा ब्रिटिश शासन के अधीन सी। हालांकि गाने विच उड़ल जहजवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर इस पर जेड़े पुरुष सीगे नूं अक्सर भीड़ भाड़ वाले स्टिम्पशियों विच भेजा जांदा सी जो कदे कलकत्ता तो रवाना हुंदे सीगे।

हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.1 ते जी अच्छे संदेश अलग दराल से बने हुए हो। हुण देखो कचौड़ी गली बारे में तो इन्ना कुछ दसता हैगा है, तुसी देखियो जरूर एक बारी गीत ते तुसी जिहड़े घर दे विच बुजुर्ग होणगे ना शायद उन्हां नूं कुछ पता होवे या फिर गूगल करो तो थानू पता लग जाना है कि यह गल्ला कि सच है कि ने। हुण देखो इस नाल होर भी गल्ला है ने जुड़िया हुई जिवें 1885 दे युद्ध दा जिक्र 40,000 सैनिकां दे विचों ना 15,000 मलेरिया पेचिश ते घने जंगलां विच होई लड़ाई दे कारण शहीद हो गए सी। हालांकि युद्ध 1885 विच खत्म हो गया सी पर ब्रिटिश जिहड़ियां नीतियां सीगियां उन्हां दे कारण 1900 दे दहाके विच भी पलायन जारी रहा। युद्ध ने व्यापक आर्थिक अस्थिरता लिया दी सी ते बर्मा विच बंदरगाह शहरां विच रोजगार दे अवसर उपलब्ध सी। इन्हां लोकां ने बंदरगाहां चौलां दीआं मिलां ते दिहाड़ी मजदूरां दे रूप विच काम कीता। बर्मा ब्रिटिश प्रणाली यानी कि काला पानी दे लई मशहूर सी इह जिस दे तहत भारतीय कैदियां नूं अंडमान ते सैलूलर जेल विच कैद कीता जांदा सीगा।

हाँ जी तो देखो वेला तो हो चुका है थोड़े तो इजाजत लैन का, पर हूँ गल एक होर दसनी सी विदेसिया जी की। विदेसिया जी की गल ये दसनी सी कचौड़ी गली के नाल जुड़ी हुई कि विदेसिया जी कहते हैं कि अज भी वर्मा वर्मा तो लौट रहे मुड़े कई लोग अपने सरनेम के तौर पर वर्मा का इस्तेमाल करते हैं। यह दिलचस्प है कि गाने के नवे वर्जन ने सदियां पुराने भोजपुरी लोग गीतों के इतिहास इतिहास में ना किवें ताजा कर दिता है। हुण तुसीं इह गीत सुन लिया हैगा या नहीं, तुसीं फटाफट दे नाल दसो ते होर दसो कि किस गीत की तुसी पिछे की कहानी तुसी जानना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे गीत है अजिहे जिन्हां दे पिछे बहुत लंबी कहानी हैगी है। तुसी जरूर दसो ते जुड़ते रहो रेडियो प्रसवानी वन सरो ऑन एम साडे फेसबुक पेज है जी prasawani@prasawani.com साडी ईमेल आईडी है जी। जिहड़ा भी अपनाउणा हो अपनाओ पर साडे नाल गल्लबात जरूर करते रहो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू करो, मैं कल करूंगी मुलाकात। रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: मैडम आई एम योर ओनली एडम।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: मैडम, आई एम योर ओनली एडम।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो,

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: आएगा

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: सर, ऑन स्टेज 5 मिनट्स।
2: ओके,
1: तुम आ रही हो?
2: मैं जा रहा
1: हूं। लगता रूम में रह गया।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: Event proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नो अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ। ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नो हैंडल करन जी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस। ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance. Owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506।

प्रिय श्रोतागण, परमानंद का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। आपका हार्दिक स्वागत मैं कर रहा हूँ संगीत सरगम नमक प्रोग्राम में। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण इस प्रकार है। मौसम की खबर से प्रोग्राम का शुरुआत करूंगा मैं, उसके बाद स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम 7:15 बजे आज सुबह का सितारा, 8 से लेकर 8:15 बजे तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, नए गीतों के साथ ठीक 8:30 बजे संगीत सरगम नामक कार्यक्रम

प्रिय श्रोतागण, आज 11 तारीख जुलाई सन 2026 है और सुबह का बेला है। यहाँ शनिवार की सुबह है। हमारे ऑस्ट्रेलिया में मौसम बिल्कुल साफ है और आज मौसमी दफ्तर ब्रिस्बेन ने निम्न मौसम की खबर हमें प्रदान की है। इस समय तापमान सिर्फ 9 डिग्री है यहाँ वेस्टर्न सबर्ब्स में, और दिन में कहते हैं कि ब्रिस्बेन में बढ़कर 21 हो जाएगा, धूप निकलेगी और साथ में 6:40 पर सूर्य उदय होगा और 5:09 पर सूर्य अस्त होगा। शाम के समय ठंड होना शुरू होगा, 10 डिग्री रहेगा रात्रि को और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायु बहेगी। इप्सविच में इसी प्रकार का मौसम होने के साथ साथ 21 रहेगा दिन में रात्रि को 8, हवा की रफ्तार 5 और फिर हम ले चलते हैं सनशाइन कोस्ट, वहां पर धूप निकलेगी 19 दिन में रात्रि को 12, हवा की रफ्तार 10 और गोल्ड कोस्ट में धूप निकलने के साथ साथ 20 दिन में रात्रि को 11, हवा का रफ्तार 6। तो ये थे कुछ साउथ ईस्ट क्वींसलैंड के मौसम के खबर। और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आपको ले चलते हैं नेडी के तरफ। जी हाँ, नेडी में यहाँ भी 6:40 पर सूर्य उदय हुआ है और 5:50 पर सूर्य अस्त होगा। आकाश पर घटा छाई हुई है, 24 रहेगा दिन में रात्रि को 19, हवा का रफ्तार 14 और लंबासा में बादल घिरे रहेंगे, 26 दिन में रात्रि को 18, हवा की रफ्तार 13 और सुबह में इसी प्रकार मौसम होने के साथ साथ 24 दिन में रात्रि को 19, हवा की रफ्तार 13। ये थे कुछ फिजी द्वीप के मौसम के खबर। अब चलते हैं न्यूजीलैंड ओकलैंड ले चलते हैं। धूप निकली हुई है, 14 दिन में रात्रि को 6, हवा की रफ्तार 8, 7:53 पर सूर्य उदय हुआ है, 5:20 पर सूर्य अस्त होगा। वेलिंगटन में ज्यादातर आकाश पर घटा छाई रहेगी, धूप निकलेगी समय समय से और 9 रहेगा दिन में रात्रि को 3, हवा का रफ्तार 21। अब आपको ले चलते हैं भारत द्वीप। भारत में अमृतसर चलते हैं पहले। धूप निकलेगी अमृतसर में 35 मैक्सिमम, 26 मिनिमम, 11 विंड स्पीड। मुंबई में बादल घिरे रहेंगे, 31 अधिक से अधिक तापमान, कम से कम 28, हवा का रफ्तार 29। और नई दिल्ली में दोस्तों धूप निकलेगी, 35 मैक्सिमम, 28 मिनिमम, 13 विंड स्पीड। 5:31 पर सूर्य उदय होगा और 7:22 पर सूर्य अस्त होगा। तो ये थे कुछ स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के मौसम का खबर। और रेडियो ब्रिस्बेन का टेलीफोन नंबर आप जानते ही है, 3279-1701, 3279-1701। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर परमानेंट रूप में 0411-127-035, 0411-127-035। और चलते हैं आगे बढ़ते हुए, मौसम खूब है और यहाँ पर ब्रिस्बेन में ओके अमला जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, होप यू आर ऑल गुड इन ब्रिस्बेन, नमस्ते बोल रही हैं। हम भी भाई आपको नमस्कार करते हुए स्वागत करते हैं इस सुबह का बेला में। शनिवार है, प्यारा सा दिन है दोस्तों और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका, क्योंकि बच्चों का आखिरी सप्ताह है छुट्टी का, मालूम है ना, ये प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल का छुट्टियों का समय है और सोमवार से बच्चे पाठशाला जाएंगे, तो शायद माता पिता निकले खरीदबीन करने के लिए, तो उनका साथ देते रहे, हाथ पकड़े रहिएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आज का पहला गीत है, थोड़ा सा दिल को छू लेने वाला गीत है, ये बिल्कुल नया फिल्म का गाना है, हार्ट टचिंग सॉन्ग बोलते हैं इसको, और तन्मय जी से अदा कर रहे हैं, तेरे बिना ये रातें अधूरी सी लागे। क्या बात है यार, किसके याद में आप खोयो कि बोलते तेरे बिना ये रातें अधूरी सी लागे। चलो सुनाते हैं आपको, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगेगा।

जी मित्रों, कैसे लगा गीत? ये बिल्कुल नया फिल्म का गाना है और कुछ नए गीत आज मैं आपके लिए सुबह सुबह लेकर आ चुका हूं। मैंने सोचा चलो भाई एक गाना ऐसे भी बजा देते हैं लोगों के लिए जो बिल्कुल नया गाना हो, ताकि आप भी इसे पसंद करें। अगला गीत भी इसी तरह है, हार्ट टचिंग लव सॉन्ग बोलते हैं इसको, एक दिल हजार यादें। क्या बात है भाई, सही बात है, क्योंकि यादें बहुत होती हैं ना, समय समय से आते हैं, समय समय पे चले जाते हैं, लेकिन कमबख्त जो यादें वो कभी छोड़ते नहीं हैं। आपको खींच कर वही स्थान पर ले जाएंगे, उसी वक्त का याद दिलाएंगे जब आप किसी से मिले थे प्यार में, वो क्या हुआ था। तो चलो सुनते हैं।

0: तो मित्रों कैसा लगा गीत? कुछ नए गाने मुझे अच्छा लगे और अच्छे लगे, तो मैंने सोचा चलो भाई आपको भी सुना देता हूं मैं, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे गाने होते हैं जो हम अक्सर आपके लिए बजाते हैं और कभी कभी ऐसे गाने नहीं बजाते हैं। तो आज वो गीत बजा रहा हूं पहले भाग में जिसमें कुछ बीते हुए कल याद आते हैं।
1: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
2: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium.

0: KR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: दोस्तों, इस समय 12 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। परमानंद के साथ आप संगीत सरगम नामक कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सभी का स्वागत है, खास लोग से लोग जो इंटरनेट से जुड़े हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत है। देश विदेश से लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। उम्मीद कर रहा हूं आपका भी, चाहे शाम हो, इवनिंग हो, या सुबह हो रही हो, या दिन हो, अच्छी तरह से गुजरे। चलो आगे बढ़ते हैं एक और मजेदार गीत के साथ। तुम ही तो मेरा दिल, भाई क्या बात है, तुम ही तो मेरा दिल। गौरव माली जी सुनाते हैं।

जी मित्रों, मैं कह रहा था आपसे कि कुछ नए गीत मैं बजा रहा हूँ आपके लिए इस समय, और उम्मीद कर रहा हूँ जो गीत बज रहे हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। पहली बार इसे मैं बजा रहा हूँ आपके लिए। चलो, दिल का मुसाफिर दूसरा गीत है, सुनवाते हैं आपको।

0: जी मित्रों, कैसा लगा? एक गीत के जो लिरिक्स है ना, पॉजिटिव दिखाते हैं, सब कुछ पॉजिटिव कह रहे हैं, तो जीवन में हमें पॉजिटिव रहना ही चाहिए। चलें कुछ विज्ञापन हम ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और दो विज्ञापन बजाएंगे।
1: आर यू रेडी टू स्टॉप रेंटिंग एंड थिंकिंग अबाउट ओनिंग वन और मे बी एन इन्वेस्टर लुकिंग टू इन्वेस्ट? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
5: Hi, this is Salman Khan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
0: जी मित्रों, रेडियो ब्रिस्बानी पर मैं परमानंद हूँ संगीत सरगम प्रोग्राम को लेकर, और 7 बजने वाले हैं यहाँ पर और सुबह का बेला है, खूबसूरत सा मौसम है, आज ज्यादातर धूप निकलेगी साउथ ईस्ट क्वींसलैंड में। एक बार फिर मौसम की खबर को दोहराता हूँ, ब्रिस्बेन में धूप निकलने के साथ साथ ब्रिस्बेन तथा इप्सुच में 21 रहेगा दिन में, रात्रि को 10 और 8, और सनशाइन कोस्ट तथा गोल्ड कोस्ट में धूप निकलेगी 19 और 20 रहेगा दिन में, और यही है हमारा मौसम का खबर। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, क्यों बतला रहा हूँ, लोग सोच रहे होंगे कि भाई घास नहीं काटा मैंने, या मोटमुआ नहीं चलाया हूँ गार्डन में, पानी नहीं छोड़ा हूँ मैं, सींचा नहीं हूँ आंगन में फूल पौधे जो जिसको मैंने बोया हूँ, तो भाई मौका अच्छा है, थोड़ा देर में उठ जाइएगा, धूप निकलेगी, निकल गई है, 9 और 10 डिग्री तापमान इस समय है, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ेगा, और आप जो ठाने हैं करने के लिए कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए, अपने अंदर ऊर्जा पैदा कीजिए, और जैसे आप खाट छोड़ोगे ना तो ऊर्जा खुद आ जाएगा। तो ये कुछ बातें थी, अभी तक आप कुछ ऐसे गीतों को सुन रहे थे जो जीवन से ताल्लुक थे और अनुभव की बातें हैं सब, कोई यादें के बारे में, कोई कैसा चाहिए, कैसा हूं मैं, ये सब बतला रहे थे। अब आगे चल रहे हैं, आगे चलते हैं किशोर कुमार जी का सहारा लेते हुए, और ये भी जीवन के बारे में कहते हैं और सच्चाई घटना पर आधारित गीतों का शब्द जो लिखे जाते हैं ना, आनंद बख्शी साहब जैसे लिखे हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत से संवारा है, पिया के घर फिल्म का नाम है, सुनते हैं।

0: जी मित्रों, जीवन है, अनुभव करने की बात है मित्रों, और उम्मीद कर रहा हूं कि ये गीत आपको कुछ जरूर सबक सिखाया होगा, क्योंकि गीत ऐसे हैं, लिखे गए हैं, और लिखे हुए गीत जो हैं वो हमेशा बहुत कुछ हमें याद दिला देते हैं, और कभी कभी हम रास्ते से अपने भटक जाते हैं, लेकिन भटकते भटकते फिर हम सही रास्ते पर आ जाते हैं, क्योंकि कुछ हमें याद ऐसे आ जाते हैं कि ये क्या मैं कर रहा हूँ, पागलपन है मेरा सीधा। तो पॉजिटिव देखिए, आगे बढ़िए, बिगड़ा हुआ काम भी बन सकता है।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
2: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है, और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अतुल यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
1: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ।
0: 6 minutes ਹੋਏ ਹੈ, 7:00
1: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
0: मित्रों आगे बढ़े हम, जबकि 6 minutes हुए हैं 7:00, और अगला जो गीत है, जोनी मेरा नाम का है, इसे भी किशोर दादा कर रहे हैं।

0: ये मित्रों एडिवर था जो नहीं मेरा नाम का, उम्मीद कर रहा हूँ कि जबकि 11 मिनट हुए हैं 7 बजकर, तो परमानंद के साथ आप जुड़े रहेंगे 8:30 बजे तक। चले आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ, और अगला जो खबर है वो ये है।
1: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
0: जी मित्रों, इट्स नॉट अ नंबर, इट्स अ स्टेटमेंट। क्या बात है, तेरी तीन देवियां चलते हैं उस फिल्म की तरफ, और किशोर कुमार जी लता जी के साथ एक डीवट अदा किए हैं, बहुत प्यारा सा है, और इसे आर डी बर्मन जी ने संगीत से संवारा है।

0: ये मित्रों लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना, डिवट था लता और किशोर जी का अदा किया गया। और आगे बढ़ते हुए चलते हैं, दो और खबर लेते हैं। रे 16 का एक खबर।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत, जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: मित्रों 20 मिनट हुए हैं 7:00, आगे बढ़ते हुए एक और डिवट है। इस बार रफी साहब आ रहे हैं लता जी के साथ।

0: जी मित्रों, जीवन के डोर से बांध लिया है, प्यारा सा गीत था अभी आपने सुना। और आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने भी विज्ञापन बजाने हैं हमें, वो हम पूरा बजाएंगे और कोशिश करेंगे कि सबका बज जाए। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
1: भैरतमान कोल दो ही चीजा हुंदिया ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो देख रो हिनेज सरपंच।
2: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसे राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
1: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाज सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नु तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com .com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
0: जी मित्र, 26 मिनट हुए हैं 7 बजकर। आगे बढ़ते हुए चलें। कैसा तेरा प्यार, कैसा गुस्सा है तेरा, अमित कुमार जी लता जी के साथ।

जी मित्रों, एक और बहुत ही प्यारा, दिल को छू लेने वाला गीत, और जबकि आरडी बर्मन जी का संगीत है तो कमाल की बात है ना। तो ये आप सुन रहे थे, और चलें आगे बढ़ते हैं, 7:30 बजे हैं, और अब समय जन्मदिन के खबरों का। जिनका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह, उन्हें हम याद कर रहे हैं, और आपके जीवन में ये दिन बार बार आते रहें, बहुत सारे शुभकामनाएं हम आपको भेज रहे हैं, और यही उम्मीद के साथ कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहेंगी। और हमारे तरफ से जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनकी शादी की सालगिरह है, मालिक आपका अच्छा जीवन दे, खुशी खुशी से जीवन को व्यतीत करें, और हमेशा ये प्यार आपका बड़ा घनिष्ठ रहे, मजबूत रहे, और कोई तोड़े नहीं आपके रिश्ते को। आज मैं एक ऐसा गीत पुराने गीतों में शामिल किया हूं जिसे मैंने बहुत पुरानी फिल्म स्कूल मास्टर से लिया हूं। ये अचानक से मेरे हाथ लग गया। 1959 में रिलीज की गई ये पिक्चर का गीत है, और जब मैंने इसका लिरिक्स को सुना, आप सोचिए उन दिनों की बात है जबकि गीत कैसे लिखे जाते थे, जीवन पे इसका असर कैसे पड़ता था, ये सब बातें। तो रवि प्रदीप जी ने इसे लिखा है, जी नहीं, कवि प्रदीप लिखे हैं, कवि प्रदीप जी ने लिखा है। लता मंगेशकर और तलत महमूद साहब इसे अदा कर रहे हैं, और साथ में बसंत देसाई जी का म्यूजिक है। क्या बात है। तो मैंने सोचा कि जब मैं इसे इतना एंजॉय किया हूँ, क्यों ना चले हम उन लोगों को याद करते हुए और उन्हें हमें सुनाते हैं। एंटैया भाई, मैं एक गाना खास तौर से आप दोनों के लिए, आपको और भाभी के लिए चुना हूँ। इसके साथ साथ और हमारे बहुत साथी हैं और यार दोस्त हैं जो पुराने गानों को बेहद पसंद करते हैं। अशोक हरगोविंद भाई, जय सच्चिदानंद, आपको भी इस दोनों को शामिल कर रहे हैं इस गीत में, और तमाम जो हमारे देश विदेश से लोग सुन रहे हैं उन सबको ओल्ड जो गोल्ड पीस है वो सुनवाने जा रहे हैं आपको हम।

0: मित्रों, मैं खास तौर से उन लोगों से आग्रह कर रहा हूँ जो लोग म्यूजिक में दिलचस्पी रखते हैं और महफिलों में जाकर गीत संगीत को अदा करते हैं, उनको चाहिए ऐसा गीत कभी कभी हमारे लोगों को सुनाएं, ताकि वो लोग जो भूले हैं, जो भूले बिसरे नगमे हम कहेंगे, जो उनके बारे में भूल चुके हैं, उन्हें ये याद आए। तो क्या बात है, बहुत बढ़िया रहेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं जब इसको सुना तो मैं देखिए स्कूल मास्टर, तो मास्टर मस्ट हैव बीन स्कूल मास्टर जो है, प्रिंसिपल को शायद बोलते होंगे उन दिनों, मस्ट बी वेरी रोमांटिक। और वो ऐसे ऐसे गानों में गानों को छेड़ रहा है और हो रहा है, तो अजब सा गीत था, लिरिक्स बड़े अच्छे थे, दिल को छू लिए, पुराने यादें बहुत ताज़ा हो गए। तो चलो आनंद लीजिए, आप भी एंजॉय कीजिए। तो इसी के साथ पुराने गीतों को यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं और हम आगे बढ़ेंगे। चलें विज्ञापन ले लेते हैं, विज्ञापन के बाद कुछ नए गीतों की तरफ चलेंगे हम। तो चलें दो विज्ञापन लेते हैं।
1: Digicel, better together.
2: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
3: Priya, next month Mama ka birthday. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
4: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
3: अच्छा, वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
0: और दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारे स्टूडियो की घड़ी में लगभग 20 मिनट रह गए हैं 8 बजने में। हम आगे बढ़ते हुए चलें, आपको कुछ मजेदार गीतों को अब अलग रूप और ढंग से सुना रहे हैं। श्रेया घोषाल जी आ रही हैं, फिल्म का नाम था तुमसा नहीं देखा। ये पुराना फिल्म नहीं, शमी कपूर वाला, ये नया फिल्म का गाना है। अ लव स्टोरी जिसको है, तुमसा नहीं देखा, लव स्टोरी। इमरान हाशमी जी और दिया मिर्जा इसमें मुख्य भूमिका निभा रही हैं। तो सुनते हैं, अच्छा लगेगा आपको।

0: मित्र, वो बहुत प्यारा सा गीत था और थैंक यू अशोक भाई आपने कॉल किया, आपको गीत अच्छा लगा। और चले हम दो विज्ञापन ले लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Mera naam Dr. Kumar hai aur yahan kuch aisa hai jise janna acha hai. Ek naya National Lung Cancer Screening Program shuru hua hai. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
0: तो मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलें, मजेदार गीतों का आनंद लेते रहें और चलें हम सातों जन्म तुझको पाते, फिल्म है, हीरो नंबर 1 सानू साहब इसे अदा कर रहे हैं।

0: जय मित्रों, गौरी तेरे नैनों में हम बस जाते। अभी आप सुन रहे थे और आगे बढ़े। घड़ी भी देख रहा हूँ, 8 बजे रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम आएगा, मगर उससे पहले खबर सुनिए।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: मित्रों, 8 मिनट रह गए हैं इस समय 8 बजने में, 8 से 8:15 के बीच रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हुए चलें, रोमांटिक गाना है, सोनू निगम साहब अलका जी के साथ अदा कर रहे हैं, चल प्यार करेगी।

0: जी मित्रों, फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है, नया फिल्म का था ये। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप परमानंद के साथ हैं और संगीत सरगम नामक कार्यक्रम को सुन रहे हैं और हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए अब थोड़ी देर में शुरू करेंगे रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया, जबकि हमारे स्टूडियो में बस बजने वाले हैं 8। तो मेरे ख्याल से चलो विज्ञापन ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: और आपको रानी क्रिएशंस स्वागत कर रही है 15 मिनट के इस प्रोग्राम में। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, केम छो, राम राम। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका ये 15 मिनट का सफर मेरे साथ परमानंद के साथ बड़ा खूबसूरती से गुजरेगा। कुछ चुने हुए गीतों को लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। और रानी क्रिएशंस में अप टू 50% ऑफ डिस्काउंट सेल चल रहा है इस समय, कंडीशंस डू अप्लाई। इसके साथ साथ साड़ीज गोइंग फ्रॉम $15, ज्वेलरी $16 सेट। तो बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो रिड्यूस किए गए हैं, यहाँ पर आप आकर देखिए। और अगर शादी ब्याह कर रहे हो तो आप आकर देखें रानी क्रिएशंस शॉप में। मर्दों के लिए और दुल्हा या दुल्हन के लिए सबके लिए कपड़े हैं, मैचिंग ज्वेलरी है और स्टोल्स वगैरह मर्दों के लिए है, पगड़ी है। इसके साथ साथ बहुत ऐसे भी वस्तुएं हैं जो शायद आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं और आपको मिल नहीं रहा है, तो रानी क्रिएशन शॉप में आकर आप एक्सेसरीज में शादी के लिए खरीद सकते हैं। किसी भी अवसर के लिए सब कुछ है, साड़ीज का बहुत बड़ा भरमार है, लॉट्स ऑफ चॉइसेस टू मेक। रेडीमेड ब्लाउजेज वगैरह सब यहाँ पर मिलते हैं और रेडीमेड साड़ीज भी मिलते हैं। लोग पूछते रहते हैं भाई कहाँ मिलेगा, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता, तो रानी क्रिएशन शॉप में चले जाएं, वहाँ पर मिलेगा आपको। और याद रहे आवर्स 10 AM टू 4 PM, आज संडे को 10 AM टू 3 PM और बाकी दिन 10 AM टू 4 PM। तो चलो आगे बढ़ते हैं, पहला गीत से आपका स्वागत करते हैं। सोनू निगम साहब आ रहे हैं अलका जी के साथ इस गीत को लेकर।

जी मित्रों, प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे और आप सुन रहे हैं रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया। और इसी के साथ ही आपको ये बतला देते हैं कि रानी क्रिएशंस में सब कुछ उपलब्ध है। यहाँ पर हर प्रकार के कपड़े हैं, कपड़ों के साथ साथ सजने सजाने के लिए बहुत सारे ज्वेलरीज वगैरह हैं जो बहुत ही घटाए हुए दामों पर बिक रहे हैं इस समय। और मेन्स वेडिंग शूज़, टेबल्स वगैरह भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगला गीत के साथ। और अगला गीत जो है महफिल ता सजदी, उदित साहब आ रहे हैं मिंटू जी के साथ, बेटी नंबर 1।

जी मित्रों, आप सुन रहे थे मिंटू, सिडनी का है और उदित जी की आवाज में बहुत ही लोकप्रिय गीत को। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और आप सुन रहे हैं रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया, और हर शनिवार को सुबह 10 से लेकर शाम को 4 बजे तक खुली रहती है, और संडे को 10 से लेकर शाम को 3 बजे तक। तो ये था कुछ जानकारी आपके लिए, और हम आगे बढ़ते हैं। एक और गीत का समय है, बजा देते हैं चादर बिछाओ बल मन।

0: जी मित्रों, नींद लगे चैन सोए रहना, अभी आप सुन रहे थे और आप सुन रहे थे रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया। और इसी के साथ रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक प्रोग्राम फैशन की दुनिया पर समाप्त हो रहा है। आज अगले शनिवार को एक बार फिर आपके सेवा में उपस्थित होकर एक और सेगमेंट लेकर आएंगे ठीक 8 बजे से। फॉर ऑल योर शॉपिंग नीड्स रिमेंबर द नेम रानी क्रिएशंस, एंड अगर पहली बार आ रहे हैं तो आकर देखिए और कपड़ों का पसंद कीजिए और डिस्काउंट जो मिल रहा है उसे फायदे उठाइए। अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, गॉड ब्लेस यू एंड नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality, service and reasonable prices.
0: Mitro, is time 16 minute hue hain 8 bajkar aur Sangeet Sargam program ko jari karte hue aapke liye hum kuch aur batlayenge, magar usse pehle aapko ye batla dun ki 8:30 baje se top 10 aap sun sakenge Nivya ji ke saath। और आज शनिवार है, इसी प्रकार का प्रोग्राम चलता रहेगा, तो रेडियो ब्रिजबानी आप सुनते रहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं विज्ञापन के तरफ, और अगला जो विज्ञापन है उसे हम बजाते हैं।
2: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
0: और आगे बढ़ते हैं, आगे आपके लिए गजब सिटी मारे सैया पिछवारे पुण्यमा जी की आवाज में।

0: जय मित्रों, गजब सिटी मारे सैया पिछवारे आप सुन रहे थे और समय देख रहा हूँ बहुत करीब है, 22 मिनट हुए हैं इस समय, कितना बजकर 8 बजकर और 8:30 बजे निविया जी आ जाएंगी और टॉप 10 को लेकर, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप उनका साथ दीजिएगा। और आप रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं, और कल याद रहे कल प्रोग्राम शुरू होगा बहुत एली धार्मिक प्रोग्राम से, फिर फिरोज भाई आएंगे सुबह प्रोग्राम लेकर, 7 बजे आप सुनोगे इस्लामिक प्रोग्राम, 8 बजे से नंद किशोर दास प्रभु जी आएंगे आपके लिए और वो वेदबानी लेकर आएंगे, फिर 9 बजे से जितेश जी आएंगे आपके सेवा में, तो ये चलता रहेगा ऐसे प्रोग्राम, और फिर बीच में 12:30 बजे से रोहित सिंह, फिर सुशीला जी उसके बाद आ जाएंगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए मज़ेदार गीतों का भाई ये सफ़र जारी रहे, और छलका छलका जाम है कश्मीरा शाह पर्दे पर आपके लिए।
1: तू है आग मैं हूँ शोला, आज मेरी कोक कोला।

ये मित्रों, बहुत ही प्यारा संगीत अभी आप सुन रहे थे, और इसी के साथ ही संगीत सरगम प्रोग्राम के समाप्ति पर हम पहुंच रहे हैं, और अगले शनिवार को एक बार फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा चाहिए, और एंजॉय योरसेल्व्स, गॉड ब्लेस यू, और क्या बोलूँ आगे। सप्ताहांत आ रहा, बच्चों का छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, तो उनके साथ आप समय को व्यतीत कीजिएगा, और मीट यू अगेन नेक्स्ट वीक। गॉड ब्लेस यू, हैव अ लवली एंड एंजॉयबल वीकेंड। प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक बार फिर परमानंद के साथ ठीक 6:30 बजे से एक और अनोखा संगीत सरगम नामक कार्यक्रम आप रेडियो ब्रिजवाणी के माध्यम से सुन सकेंगे। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा। हम

कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। सबसे पहले हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन। जी हाँ, मतलब वीकेंड आ गया है, मस्ती झूमने का वक्त आ गया है और ये सारी चीजें हम करने वाले हैं, मतलब सारी अच्छी चीजें होने वाली हैं। वीकेंड अपने आप में एक बहुत अच्छा दिन है, मतलब अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी जो है वो होती है, मतलब आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता है उठने का, जल्दी जल्दी जाने का, खाने का टाइम नहीं देखना होता किसी चीज का कि जल्दी जल्दी करना है, सब कुछ एकदम सुकून से, आराम से, इत्मीनान से आप कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाट वीकेंड इज। सो आइए वीकेंड को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम वीकेंड को सेलिब्रेट करते हैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से। जी हाँ, हम लाते हैं आपके लिए एक स्पेशल सा प्रोग्राम जिसका नाम है टॉप 10 हॉट 10। इस प्रोग्राम में हम आपको 10 चुनिंदा गाने सुनाते हैं, लेकिन कोई नॉर्मल गाने नहीं, ना ना ना ना ना, नॉर्मल गाने नहीं होते, बल्कि बहुत ही स्पेशल गाने, ट्रेंडिंग गाने और जो सब जगह पर एकदम बवाल मचा रहे होते हैं, बट ऑल इन अ गुड सेंस, उन्हीं गानों को हम आपके लिए लेकर आते हैं। सो कोई भी गाना नहीं, बल्कि बहुत ही खास गाना आपको सुनने को मिलता है यहाँ पर। तो आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शुरुआत होगी 10वें नंबर के गाने के साथ, जो कि है कॉकटेल 2 का गाना। नाउ मूवी जो है ऑलरेडी रिलीज हो गई है और अच्छा काम कर रही है बॉक्स ऑफिस पे। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पे अच्छा काम कर रही है। इसमें है शाहिद कपूर, इसमें है रश्मिका मंदाना और साथ में है कृति सेनन। जबरदस्त मूवी है या नहीं है, कितनी अच्छी ये एक्सपेक्टेशंस पर सही उतर पाई है, ये तो आप ही बताओगे मुझे, लेकिन जो लोगों का कहना है वो हम आपको बताएंगे बाद में। पहले सुनाएंगे गाना, उसी का गाना बंधु 2.0। नाउ दिस सॉन्ग इज अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग, जो कि पहली मूवी में भी था, तुम ही हो बंधु। यहाँ पे इसमें थोड़ी सी छेड़ाछाड़ी करने की कोशिश की गई है, इसमें कुछ अच्छा एलिमेंट लाने की कोशिश की गई है, बट लेट मी टेल यू, वो नहीं हो पाए उसमें कामयाब। सो या बट ये गाना ट्रेंड कर रहा है, सो ऑफ कोर्स हम आपके लिए प्ले करेंगे।

जी हाँ दोस्तों, तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस बताया जा रहा है जो कि कॉकटेल पहली थी और इस वाली कॉकटेल में, कि कॉकटेल वन की कहानी ना काफी रियलिस्टिक थी। जी हाँ, मतलब उसमें जो भी कैरेक्टर था, जो भी कहानी थी, जो भी स्टोरी थी, जो भी राइटिंग थी, वो सेंस बनाती थी। जी हाँ, ऑफकोर्स जो एक्टिंग की एक्टर्स ने उसी की वजह से मूवी लेजेंडरी बन गई, और ऑफकोर्स वो मूवी जो है वो अपने आप में एक बेंचमार्क है। लेकिन जब कॉकटेल टू आई तो सबसे पहले लोगों की एक ही शिकायत थी, वेल ऑफकोर्स आई एम नॉट गोना टेल यू द स्टोरी, बट द थिंग इज कि यहां पर लोगों का कहना है कि ये स्टोरी सेंस नहीं बना रही और कहीं कहीं तो आपका खून भी जलेगा, खासकर जो लेडीज हैं उनका खून जल सकता है इसकी कहानी को देखकर कि क्या चल रहा है, चल क्या रहा है। या बट द थिंग इज कि इसमें सारे के सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लाइक रश्मिका मंदाना, शाहिद कपूर, कृति सैनन, ऑल द एक्टर्स आर रियली गुड, बट कहानी वो लैक कर रही है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपने कॉकटेल देख ली है, कॉकटेल टू, और अगर आप लोग इससे इम्प्रेस्ड हैं जरूर बताइए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं क्या ही कर दिया इस मूवी में, तो भी हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, जरूर बताइएगा। आपकी फीडबैक और आपका रिव्यू जो है वो बहुत ही कीमती है। इसी के साथ कॉकटेल टू है थिएटर्स में लगी हुई, गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। अगला गाना है जवानी तो इश्क होना है, ये मूवी भी लगी हुई है अभी भी थिएटर्स में, और ये है वरुण धवन, मृणाल ठाकुर एंड पूजा हेगड़े की कहानी। इट्स अ क्लासिक मसाला डेविड धवन मूवी, एंड आपको पता ही है उसका क्या मतलब है। सुनते हैं इसका गाना और फिर करते हैं और बातें।

0: say whoa.
1: जी हाँ दोस्तों, तो वाओ और से वाओ तो हो गया है, मूवी कितनी वाओ है वो तो आप ही हमें बता सकते हो। लेकिन अगेन, जैसे मैंने कहा कि डेविड धवन जो कि अपनी मसाला मूवीज को लेकर हमेशा से फेमस रहे हैं, राइट, उनकी जो मूवीज है वो काफी चर्चित रही हैं अर्ली 2000 और लेट 90s में। सो ऑफकोर्स वैसी ही मूवी क्रिएट करने की कोशिश उन्होंने की है, और दैट टू फॉर हिज ओन सन, मतलब वरुण धवन और डेविड धवन दोनों जो फादर सन ड्यूओ जो है वो आपके लिए ये मूवी लेकर आए हैं। अगेन, आप ये मूवी देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब इट्स अ हैप्पी गो लकी फनी टाइप की मूवी। अब ऑफकोर्स उसका मतलब क्या है, यू नो वेरी वेल। इसी के साथ ये मूवी आप देख सकते हैं थिएटर्स में, और अगला गाना मैं अब आपको सुनाने के लिए तैयार हूं, विच इज जग से लाज, अगेन फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2। सो कॉकटेल 2 जो है वो बॉक्स ऑफिस को तो डोमिनेट कर ही रही है, चाहे फिर रिव्यू कैसे भी हो, बट इसके गाने इस लिस्ट को भी डोमिनेट कर रहे हैं, और ना सिर्फ इस बार की लिस्ट को बल्कि पिछले 3 से 4 से 5 लिस्ट को, मतलब पिछले 3-4 हफ्तों से इसके गाने डोमिनेट कर रहे हैं। मतलब इसी का गाना है जो नंबर 1 भी है, क्या आप गेस कर सकते हो कौन सा है? चलिए आप गेस कीजिए तब तक। अभी वाला गाना है जग से लाज, और ये है 8वें नंबर का गाना इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरशे निविया के साथ, और वही प्रोग्राम जो आपको बढ़िया बढ़िया फील कराता है वीकेंड पे, प्लस आपको मजे करवाता है। जी हाँ, आपको अपडेटेड भी रखता है। उसी के साथ हम आ गए हैं दोबारा से, और यहाँ पर जैसे प्रोग्राम चल रहा है हमने 3 गाने आपको सुनाए हैं जो कि 10, 9 और 8 नंबर के हैं। अब जरा चलते हैं सीधा 7वें नंबर के गाने की तरफ, और वो 7वें नंबर का गाना है बेबी डू डाई डू। जी हाँ, बेबी डू डाई डू, और ये है हुमा कुरैशी का गाना इश्क कमीना 2.0। मैं एक चीज देख रही हूँ कि लोगों को मेहनत करने में मजा ही नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी नया बना ही नहीं रहे हैं। सबको 2.0, 3.0, 4.0 बना रहे, क्यों पुराने क्लासिक गानों के साथ ऐसी छेड़छाड़ होती है? आई हैव नो क्लू, बट द थिंग इज कि ये गाना यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है। यू कैन ऑलरेडी इमेजिन कि ओके, कुछ तो होगी इसमें बात। सुनते हैं इसको और फिर करते और बातें।
6: कत्ल करती है निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

ओके ठीक है, मैं कहूंगी कि ये वाला गाना इतना बुरा नहीं है। मतलब ये गाने के साथ जो छेड़ाछाड़ी हुई है, मतलब इसको जो नए तरीके से रिक्रिएट करने की कोशिश हुई है, ये इतनी बुरी नहीं है। ऑल दो बहुत सारे गानों के साथ गड़बड़ हो जा रही है। आई मीन तुम ही हो बंधु को उन्होंने बंधु 2.0 बना दिया, दैट इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। और अगर आप उसकी वीडियो देख लोगे देन यू विल बी लाइक क्लासिक वीडियो थी, क्या क्लासी वीडियो थी पहली मूवी में तुम ही हो बंधु की, ये क्या है, व्हाट इज दिस। सो ये वाली फीलिंग आपको इसमें नहीं आएगी फॉर श्योर। ये गाना इतने बुरे हाल से इसके साथ जो है उसका पोस्टमार्टम नहीं किया गया, दैट वी कैन टेल। चलिए इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना मैं आपको सुनाती हूँ। और इसी के साथ मैं आपको ये बता देती हूँ कि अल्फा वीकेंड इज हियर। जी हाँ, मतलब अल्फा वीकेंड जो मैं कह रही थी, मैंने आपको पिछले कल भी बताया था कैसे आलिया भट्ट, शर्वरी और साथ में बॉबी देओल की वो बहुचर्चित मूवी जिसमें वो लिटरली बहुत मार धाड़ तोड़फोड़ करती हुई नजर आएंगी, वो आ गई है थिएटर्स में। यू कैन वॉच इट एंड लेट मी नो क्या आलिया भट्ट इतने बैडास कैरेक्टर में आपको अच्छी लग रही है। ऑल्दो दिस इज नॉट द ओनली बैडास कैरेक्टर शी हैज प्लेड, उन्होंने कुछ दिन पहले और कुछ वक्त पहले जिगरा भी की थी जिसमें कि वो अगेन बहुत ही ज्यादा वायलेंट रोल में नजर आई थी एंड अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। बट दिस इज अ डिफरेंट। क्या है, पहले आपको लगेगा बॉबी देओल के साथ बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग है, बट बॉबी देओल का क्या कैरेक्टर है, बहुत ही शेडी, बहुत ही ग्रे कैरेक्टर है। अच्छा कैरेक्टर है, बुरा कैरेक्टर है, वो आपको सब कुछ मिलेगा देखने को इन अल्फा। सो गो फॉर इट एंड लेट मी नो। और इसी के साथ 6वें नंबर का गाना आप सबके लिए जो कि है व्याह करवा दो जी। अरे ठीक है, जिनको करनी है उनका करवा दो, जिनको नहीं करनी उनका मत करवाओ।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट फिर से रिपोर्ट्स की माने तो कर रहे हैं शादी। एंड आपको नहीं पता मिस्टर परफेक्शनिस्ट कौन है बॉलीवुड के, तो मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं पीके की, हम बात कर रहे हैं रंग दे बसंती की, हम बात कर रहे हैं थ्री इडियट्स की और हम बात कर रहे हैं दंगल की। अब ये सारी मूवीज में एक ही चीज कॉमन है और वो है इनके मेन एक्टर, दैट इज आमिर खान। तो रिपोर्ट्स की माने तो कि वो फिर से शादी कर रहे हैं, दिस विल बी His third wedding, जो कि वो literally एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही shy lady से कर रहे हैं। मतलब अभी जो उनकी girlfriend है गौरी, उनके साथ उनकी शादी होने वाली है और इसके बारे में उन्होंने खुद भी कहा है इनफैक्ट कि कैसे वो जो है वो शादी करने वाले हैं। सो मिस्टर परफेक्शनिस्ट ऑफ बॉलीवुड इज गेटिंग मैरिड अगेन एंड उनके फैंस जो है वो उनके लिए खुश है, क्योंकि जब भी प्यार पनपता है किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है, राइट? सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। इसी के साथ यहाँ पर अगला गाना मैं आपको सुनाती हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी आप क्या क्या थिएटर्स में देख सकते हो अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये गाना जिसका नाम है इश्क मस्ताना फ्रॉम मैं वापस आऊंगा मूवी, और ये मूवी बहुत ही प्यारी है, सब इसके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं।

0: वो पाट दे तुड़ा।
1: क्या बात है, एकदम देसी पंजाबी विद द हिंट ऑफ पॉप, अ बिट ऑफ क्लासिक टोन। क्या गाना है, क्या गाना है। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर अब जरा सीधा चलते हैं, आपको बताते हैं क्या क्या आप इस हफ्ते अपने नजदीकी सिनेमा घरों में देख सकते हैं। जी हाँ, अल्फा के बारे में मैंने आपको बता दिया, मैं वापस आऊंगा कैन बी ऑप्शन, जिसका गाना भी आपने सुना, इसमें दिलजीत दोसांझ, वेदांत रैना और साथ में शर्वरी वाघ आपको मिलेंगे। दो प्रेमी जो कि बिछड़ जाते हैं क्योंकि दो देश अलग हो जाते हैं, विच इज हिंदुस्तान और पाकिस्तान। उसके बाद क्या होता है वो आप देखिए, इसी कहानी में, इसी स्टोरी में, इसी मूवी में आपको पता चलने वाला है। इसके अलावा और क्या क्या आप देख सकते हैं थिएटर्स में, आइए जरा वो भी आप सुन लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ है, बहुत सारी मूवीज है। इनफैक्ट आप बच्चों के साथ भी 2 से 3 मूवीज देखने जा सकते हैं, वो मूवीज भी लगी हुई है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अल्फा आप देख सकते हैं, साथ में आप देख सकते हैं कॉकटेल 2, तीसरी मूवी आप देख सकते हैं मैं वापस आऊंगा, चौथी है वेलकम टू द जंगल। जी हाँ, वेलकम टू द जंगल जो कि अक्षय कुमार की मूवी है, इसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं उनके अलावा, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी बहुत सारे लोगों को लेके जाना चाहिए इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि इतने सारे स्टार्स को, लिटरली इतने सारे स्टार्स को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ 2 या 3 लोग जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सो काफी सारे लोगों को जाइएगा, क्योंकि इसमें इतने सारे एक्टर्स हैं कि आप गिनती भूल जाएंगे लिटरली। बट ये अच्छा काम कर रही है और अक्षय कुमार ने लिटरली थैंक यू भी कहा है अपने ऑडियंस को। इसी के साथ ये एक और मूवी जो है वो है नागा बंधम, जी हाँ, द सीक्रेट ट्रेजर। ये मूवी कैन बी रियली इंटरेस्टिंग, आप इसका ट्रेलर देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको कैसी लगी। बट इट्स वेरी यू नो हिस्टोरिकल फैंटेसी, एडवेंचर, एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर, सब कुछ आपको मिलने वाला है। और या ये साउथ इंडिया की, पैन इंडिया मूवी है लेकिन साउथ की तरफ से आई है, जो कि काफी अच्छी मूवीज बनाते लाइक बाहुबली, KGF, राइट, वैसी वाली मूवीज। इसी के साथ यहां पर जो और मूवीज है जो आप देख सकते हैं जो कि हॉलीवुड मूवीज है, उनमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सुपर गर्ल। जी हाँ, आप सुपर गर्ल देख सकते हो जाके। और इसी के साथ बेबी डू डाई डू जो कि हुमा कुरैशी की मूवी का आपने गाना सुना था थोड़ी देर पहले, वो भी लगी हुई है, आप उसे भी देख सकते हो। और अगर आप उसके जॉनर को जानना चाहते हो तो एक्शन, क्राइम, मिस्ट्री, थ्रिलर है। जी हाँ, सुपरगर्ल आप देख सकते हो और इसके अलावा 3 और मूवीज है जो आप देख सकते हो, उसमें से 2 आप अपने बच्चों के साथ देख सकते हो, विच कैन बी वेरी एक्साइटिंग टू वॉच। यहां पर अगला गाना मैं आपको सुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, जो कि है उच्चा लंबा गदा। हमने वेलकम इन द जंगल की बात की है जो कि वेलकम 3 है, वेलकम का 3रा पार्ट है, तो उसी का गाना इसमें भी पहली मूवी के गाने को लेकर उसका एक और वर्जन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। आप खुद ही बताइए कैसा है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले वर्जन में इतना बुरा इन्होंने नहीं किया कंपैरेटिवली टू द अदर सॉन्ग्स, जो कि रिक्रिएट होने के चक्कर में गड़बड़ हो जाते हैं।

0: We miss you, Katrina. Bring the bass back.
1: तो आपने सुन ही लिया होगा कि वी मिस यू कैटरीना, ये कहना है किसका? वेल ऑफ कोर्स अक्षय कुमार का, क्योंकि वेलकम में कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार की जोड़ी ने एकदम आग लगा दी थी उस वक्त सिनेमा घरों में। और कैटरीना कैफ ने इस मूवी में काम नहीं किया है, दिशा पाटनी ने किया और बहुत सारे और एक्टर्स ने किया है, बट यहां पर अक्षय कुमार ने मेक श्योर किया कि गाना अगर हम पुराना ले रहे हैं जिसमें ठुमके थे कैटरीना कैफ के, तो यहां पर मिस यू तो कहना पड़ेगा। और मिस तो सच में वो कर रहे होंगे, लाइक कैटरीना कैफ एंड अक्षय कुमार ने अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज दी है। और ये जोड़ी, मतलब एक टाइम था ये जोड़ी इतनी ज्यादा क्रेजी बन गई थी, इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी कि सब पीका पड़ गया था। सो या दिस इज इट। इसी के साथ अगला गाना आपको सुनाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं, जिसका नाम है जब तलक। लेकिन जब तलक से पहले मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी मूवीज आप देख सकते हो अपने बच्चों के साथ। पहली मूवी टॉय स्टोरी 5। जी हाँ, टॉय स्टोरी 5 आप देख सकते हो, और ये टॉय स्टोरी का पांचवा पार्ट है। और ये अगर आपने नहीं देखी टॉय स्टोरी तो आपको जरूर देखनी चाहिए, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड मूवीज आउट देयर। सो जरूर देखिए, अपने बच्चों के साथ देखिए, यू आर गना लव इट। जी हाँ, इसी के साथ आप अपने बच्चों के साथ मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स भी देखने जा सकते हैं, जो कि सिनेमा घरों में लग गई है, थिएटर्स में लग गई है, एंड आप मुझे बता सकते हैं आपको कैसी लगी। अगेन, आजकल बच्चों के साथ आप बहुत सारी मूवीज नहीं देख सकते हैं, सो अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है जल्दी से उनको लेकर जाइए, क्योंकि उनको भी मजा आने वाला है काफी इसके साथ, एंड ये तो टाइम भी है। सो ऑफ कोर्स गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। इसी के साथ एक और गाना आप सबके लिए, जो कि है जब तलक, अगेन द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2। सुनिए इसको और फिर करते हैं और भी बात।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644 35 पर, याद रहे 04006444 35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 04305258 96, दैट इज 04305258 96। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ, और इसी के साथ नंबर 2 सॉन्ग पर हम पहुंच गए हैं, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम दिस लिस्ट, एंड दैट इज मस्कारा। मैंने पहले भी कहा है कि कैसे ये गाना पॉपुलर हुआ था। सबसे पहले आलिया भट्ट जो है वो कांस फिल्म फेस्टिवल में जाती है, वो अपने लिए अपने आप को रेडी कर रही थी, अपने लुक को रेडी कर रही थी, तभी वो मस्कारा लगाते लगाते इस गाने को गाती है। जी हाँ, और फिर वो शाउट आउट देती है अपने दो फेवरेट लोगों को, विच इज वेदांग रैना, जहां पर वो बहन बनी होती है वेदांग रैना की जिगरा में, और शर्वरी बाग के साथ तो वो अल्फा कर ही रही थी। सो अगेन दोनों को वो शाउट आउट देती है, एंड अगेन ये मैं वापस आऊंगा मूवी का गाना है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट है। इम्तियाज अली ने ना गाने बहुत ही ज्यादा प्यारे बनाए हुए हैं, आई हैव टू से। और मतलब ऐसी ऐसी कोलैबोरेशंस है जो आपको लगेगा एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, वो सब आपको देखने को मिलेगा। सो या मस्कारा सुनते हैं, जो कि बहुत ही खास है गाना, और फिर जाते हैं सीधा नंबर 1 गाने की तरफ, जो कि अगेन बहुत खास है अपने ही मायने में। तो आए सुनते हैं सबसे पहले मस्कारा।
7: किस

जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपने मस्कारा नहीं लगाया तो लगा लीजिए, क्योंकि इस गाने को सुनने के बाद भी मस्कारा नहीं लगाया तो गड़बड़ है। जी हाँ, एंड आई एम टॉकिंग टू ऑल माई लेडीज। जी हाँ, मस्कारा बहुत ही खूबसूरत चीज है भाई, और जिन मेरे मेल लिसनर्स को नहीं पता है व्हाट मस्कारा एग्जैक्टली इज, आपको मैं बता दूं कि हमारी आईलैशेस को खूबसूरत और बहुत हैवी बनाने के लिए जो प्रोडक्ट लगाया जाता है उसे मस्कारा कहते हैं। और अगर आप चाहते हैं अपनी किसी महिला मित्र को वू करना, तो मैं कहता हूँ मस्कारा जो है वो गिफ्ट कर दीजिए और फिर देखिए क्या बात बनती है आपकी। जी हाँ, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलना होगा कब? ऑफ कोर्स मंडे को मिलेंगे, गपशप करेंगे और बहुत सारा फन भी करेंगे, और ऑफ कोर्स आपको रियलिटी चेक भी देंगे, क्योंकि इवनिंग वाइब में बहुत कुछ होता है, न्यूज होती है, खबरें होती हैं, गपशप होती है, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने होते हैं और आपकी फरमाइशें भी होती है जो कि टॉप 10 हॉट 10 में नहीं होती। बट या मिलना होगा अब आपसे मंडे को, तब तक के लिए इंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रुसवानी 107.1 AM। ये लास्ट सॉन्ग और नंबर वन गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, मैंने कहा था गेस कीजिएगा कॉकटेल 2 का कौन सा गाना है जो नंबर वन है। वेल, इट हैज टू बी माशुका, इसके अलावा कोई और कैसे हो सकता है। सो सुनते हैं इसको एंड मिलते हैं अब आपसे मंडे को। बाय, सी यू, टाटा।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane. LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
3: ਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
4: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
3: ਸਰਪੰਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
2: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।